जागो जागो जागो जागो शहंशाहे दुनियाउद्दीन, उठो उठो जरा अल्लाह मकां के मकी, देखो देखो ये हाँ।

शामी, रूह तुम पर फिदा आज की रात है या नबी, बर्फ से तेज है, बर्फ से तेज है, बरात

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: शुरू होती है जहां कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
1: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है, वो ढूंढ

0: It's 7:30 AM. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए.
3: This message was brought to you by FM 100 Pakistan.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच, HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस, उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
4: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
5: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
6: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
7: नई स्कीम,
8: कमिटी,
9: लाड बनाए फरो।
8: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
10: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: शराइत ज़वाबित लागू हैं।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: एक दुनी दो, दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
13: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
14: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
15: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
14: शराइत ज़वाबित लागू हैं।
16: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
13: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
17: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
18: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
19: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
18: एंड डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
0: एंड ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, AGS ट्यूबलर बैटरी।
16: एंड
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: एंड दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरकीब देते हैं। ये आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है।
7: منشیات فروش انہیں طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
20: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
21: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
22: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
23: ہماری ذمہ داری ہے.
24: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365. FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
25: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 8:30 AM. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो. श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद.
5: जीते 20,000 रुपए. बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका. जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके. शराइत जवाबित लागू है. अस्करी बैंक.
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
8: नई स्कीम,
9: कमिटी,
7: लाड बनाए फरो.
9: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो.
10: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक. शराइत ज़वाबित लागू है.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
11: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
12: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500.
13: अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात.
14: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
15: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया. तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है. हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया.
16: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है. इसमें आपकी कोई गलती नहीं.
17: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
11: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
13: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक. अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना.
14: शराइत ज़वाबित लागू है.
0: This program is brought to you by.
13: अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
18: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
17: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: And
19: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ.
8: براہ راست.
19: اینڈ ڈیٹول فول سوپ, یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے.
20: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام, اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری.
2: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
11: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
21: Us on facebook.com/fm247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक. अब करो सफर टेंशन फ्री क्योंकि जैस कैश है ना.
6: शराय तो जवाबित लागू है.

0: चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।

0: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
3: एंड लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
4: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त
3: एंड डेटॉल फिल्टर ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए
5: एंड ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम AGS ट्यूबलर बैटरी
6: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
7: एंड दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमी इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
9: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
12: हमने आप नाक उसे 3 बार मौत देखे
13: टाइम सी मनु ऐसे ही के मैं हूँ कब्र से चला गया मैं नहीं बचा।
14: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई सानू मारिया सानू कुटिया।
11: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
15: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
11: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरून

0: जीते 20,000 रूपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रूपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
1: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
5: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
6: नई स्कीम,
7: कमिटी,
8: लाड बनाए फरो।
9: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
10: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: शराइत ज़वाबित लागू है।
12: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
12: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
13: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
15: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
16: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन DNCs को तस्लीम करना है।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
17: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे, तुम्हारे जिस्म नहीं तुम्हें थकाया।
5: तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
6: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive, and chronic disease.
7: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.

0: शैतान।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
4: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
5: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
6: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
7: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
6: एंड डेटॉल फूड सोप, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाएं।
8: एंड ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, AGS ट्यूबलर बैटरी।
9: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: एंड दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
11: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
12: FM247365.
13: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
14: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: एंड
3: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: एंड
4: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त.
0: एंड
5: डेटॉल फूल सोप, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
0: एंड
6: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, AGS ट्यूबलर बैटरी.
0: एंड
7: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: एंड
6: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
8: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
2: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसी नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए

0: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं इंड्राइव कार पाई के रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: एंड
3: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: एंड
4: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त.
0: एंड
5: डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
0: एंड
6: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम. AGS ट्यूबलर बैटरी.
0: एंड
7: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: एंड
6: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
8: खवातीनो हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जब ये जहर हमारी रगों में साहित कर चुका होता है. वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है. मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेलजोल से जाके जुड़ता है. घर दिल से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है. खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके. हमारा आज़म एक कौम एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
9: ईद उल अज़हा पर सफाई की रिवायत, महफूज हवाई सफर की जमानत. तवज्जो फरमाएं, एयरपोर्ट्स के अतराफ कुर्बानी की बाकियात खुले आसमान तले न छोड़ें. ये बाकियात एयरपोर्ट्स के गिर्द परिंदों की तादाद में इजाफे का बायस बनती हैं और जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात में इजाफा हो जाता है जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है. एयरपोर्ट्स के गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें. आए जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाएं, थोड़ी सी एहतियात से फजाई सफर को महफूज बनाएं. डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी.
10: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग, इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ, सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: FM 100،
8: 31 سال FM 100، آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
7: السلام علیکم پاکستان۔

0: FM247365. FM247365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: समर्स में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल। हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोज करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: लाड बनाए फरो।
3: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद ईद।
5: मोहतात रहे, अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान,
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: Us on facebook.com/FM247365.
8: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: FM 100 Pakistan wishes all its listeners Eid Mubarak to you and your family. Stay happy always and stay tuned with DJ Cressella.
1: Hello, Ray friends. A very good morning and assalamu alaikum. Welcome to the show once again, the second day of Eid, and we are here on the time. Once again, your DJ is here. And it's all about celebration. So yes, you're going to be a part of my show via text messages. So all you got to do is make sure ke aapke cell phone mein credit to hoga. Of course, hoga Eid hai yaar, DJ Cressella. There will definitely be credit in my cell phone. I'm speaking for you right now. Kev, हमारे साथ साथ रहेगा. हमारे पास gifts भी हैं जो हम आपको देना चाहते हैं. बहुत ही simple है और it's going to be all about text messages. No phone calls this week. It's going to be just text messages. Thank you so very much. All you got to do is अपने cell phone के जरिए अपने message box में जाना है. आपने type करना है KHI. एक space दीजिएगा अपना नाम, अपना contact number. और वेट कीजिएगा, मैं आज सवाल भी तो ऑनर करूंगी. ऐसे खाली पीली ग्लास थोड़ा बारा ना आपको गिफ्ट थोड़ी दूंगी. यस, नॉट गोइंग बी दैट इजी. इट्स गोइंग बी यस ऑल अबाउट यू गाइस हुज गोइंग बी पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो एंड यू गोइंग बी विनिंग गिफ्ट्स. यू गोइंग ट्राई एंड विन गिफ्ट्स. हर साल हर त्यौहार पे आई मेक श्योर आई डोंट कम खाली हाथ. ऐसे भी खाली हाथ आना अच्छा भी नहीं होता यार. इट्स ऑलवेज यू हैव टू बी लोडेड, यू नो, बी इट एनी ओकेजन, यू गॉट टू बी टोटली लोडेड. खैर, हमारे साथ साथ रहेगा. और आपने मुझे ये भी बताना है कि कल आपकी ईद कैसे गुजरी, क्या क्या मसरूफियात थी. आई नो के लॉट ऑफ पीपल विल से रीजन के साथ पहला दिन हमारे घर पे कुर्बानी होती है, तो यस, बहुत अपरा तफरी होती है, बहुत सारा काम होता है, स्पेशली फॉर द खवातीन होता है. या यू गाइज एब्सोल्युटली यू बिकम द असिस्टेंट्स टू द कसाई, यू नो. आई वुडंट से एनीबडी एल्स बट द फीमेल्स basically become the assistants to a kasai on these especially on Bakra Eid, because there's a lot of qurbani. Aaj bhi main aa rahi thi to there is a lot of qurbani being still happening, and my mohalla is a little bit on a bach halka mod right now. Halka mod ke mazrat basically is that there is a lot of qurbani has been done yesterday and today, because mere ghar ke paas to it was like, you know, a chota mandi. हर गली में एक छोटी मंडी थी. इट वॉज लाइक सो मच ऑफ आई वुड से कुर्बानी वाला सिलसिला डाउन देयर, बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ मंडी से बाद बेसिकली लॉट ऑफ पीपल वर बाइंग सैक्रीफाइस एनिमल्स, एंड ऑफ कोर्स देयर वर लवली एनिमल्स. तो हमें सुनने में भी आया है कि इस साल 98-99% sale was there from the main mandi, basically the main mandi, the badi mandi. Stay tuned to the events. I got a commercial break that I got to go in for, and I'll definitely come back on the dial. But hamare saath saath rahega, don't even think of touching the dial, because your DJ is very much here. Stay tuned, stay connected. So here we go with the commercial break.
2: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: हर श्वाबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है, ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं. श्वाबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान, 75 साल से काबिले एतमाद.
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें, और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247.
0: FM 100 Pakistan wishes all its listeners a very happy Eid Mubarak.

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: लाड बनाए फरो।
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
6: FM 24/7/365

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
3: Keep it here. We are putting the hits into high gear.
4: High gear.
3: FM 100.

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
2: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
1: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
3: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत, टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।

0: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में एक खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
6: FM247365
5: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Shifa wahan se shuru hoti hai jahan kudrat muskurati hai. Schwabe Single Remedies. कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247365

Assalam o Alaikum Pakistan and Assalam o Alaikum everyone. This is me Fatma Khan aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक. जी हाँ, आज ईद का दूसरा दिन है और आज का दूसरा दिन भी बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है. अब बहुत सारी जगहों पर इस वक्त कुर्बानी का सिलसिला जारी है, बहुत सारी जगहों पर इस वक्त दावत का सिलसिला जारी है, बहुत सारी जगहों पर इस वक्त गोश्त को तकसीम करने का सिलसिला जारी है और बहुत सारी जगहों पर कलेजी कल नहीं आज पकने जा रही है. तो हर जानब कुछ न कुछ मसरूफियत का सिलसिला है. अमूमन तौर पर वैसे जो बकरीद का फर्स्ट डे होता है ना, उसमें ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि 60% लोग अपनी कुर्बानी कर लेते हैं और ईद के दूसरे दिन ऑलमोस्ट 20-25% और रेस्ट ऑफ यानी कि लाइक ईद के तीसरे दिन तो 15% या 10% लोग करते हैं. लेकिन क्योंकि इस दफा ईद का तीसरा दिन ही वर्किंग डे है, सो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से इस दफा तो अगर इस रेशो को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू की जाए, सो 5% लोग ऐसे होंगे जो ईद के तीसरे दिन जो है वो कुर्बानी कर रहे होंगे. इसके पीछे वजूहात जो हैं वो वर्किंग डे होने की हैं. खैर भाई, क्या करें भाई, काम है, काम तो करना ही पड़ता है. खैर जी, आप सबको ईद मुबारक. और इसी के साथ साथ सबसे पहले हम करते हैं प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज. आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम ईद फीस्ट विद मी फातिमा खान. तो चलें जी, कर लेते हैं सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज, फिर करेंगे आपसे गुफ्तगू.

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज, क्योंकि भाई बात यह है कि प्रोग्राम जो भी हो बाकायदगी से आगाज में जरा एनर्जेटिक सा होना चाहिए, तो बाकी सारे लोगों में भी ना एनर्जी लेवल जो है वो हाई हो जाता है। ईद फीस्ट आप लोग सब सुन रहे हैं मेरे साथ, अजीत का दूसरा दिन है जो कि जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। जिन जिनकी कुर्बानी कल के दिन हो चुकी है, आज उनका जो है वो मिलने मलाने का दिन है, बिकॉज कल भी ऑब्वियसली मिलते हैं लेकिन इतनी ज्यादा वो जो ईद के कपड़े हैं तैयारियां व्यारियों के साथ ना मुलाकात दूसरे दिन होती है, बिकॉज पहले दिन तो बड़ा हैक्टिक होता है और बड़ी थकन होती है, लेकिन ईद के दूसरे दिन ना ये मसरूफियात का सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी कि आने जाने का। खैर जी, आप लोगों का क्या स्टेटस है, क्या सूरत हाल है, इसे बताने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे, तो इस तरीके कार के जरिए आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो हूं वो 3 बजे तक मौजूद हूं, और अलबत्ता जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि बातें तो हमारी तब्दील होंगी लेकिन तरीका कार कॉन्स्टेंटली सेम रहेगा, तो इस तरीके कार के जरिए आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो भाई ईद के दूसरा दिन क्या सूरत हाल है, भाई अभी भी ऐसा है कि रोड पर ट्रैफिक है, थोड़ा थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहों पर कुर्बानी का सिलसिला जारी है। अभी आते हुए मैं देख रही थी कि जी हाँ, ऑलमोस्ट हर तरफ ही कहीं ना कहीं कुर्बानी हो रही है, तो जिनके ईद के दूसरे दिन कुर्बानी है वो आज भी मुझे लग रहा है सिर्फ गोश्त तकसीम करने जाएंगे, मिलने मिलाने का सिलसिला फिर ईद के तीसरे दिन। ईद का तीसरा दिन तो भाई वर्किंग है, और ये ईद का तीसरा दिन वर्किंग है ना, ये इतनी कोई सैड तरीन चीज है ना कि हर किसी की जुबान पर जब भी ईद के तीसरे दिन का जिक्र कर रहे हैं ना तो वो सबसे पहले अपनी दुख भरी दास्तानें बता रहा है कि यार ईद के तीसरे दिन हमें तो ऑफिस जाना है, ओह दैट्स रियली सैड। लेकिन कोई बात नहीं जी, ईद का तीसरे दिन अगर आपका वर्किंग है तो कोई मसले की बात नहीं है, बिकॉज आप एक दिन ही काम पर जाएंगे और इसके बाद आपको सैटरडे संडे मिलने वाला है, तो ट्रैफिक जाम जो है ना वो इस वक्त सैटरडे संडे वाले दिन होगा, क्योंकि सैटरडे एंड संडे को होंगी बारबेक्यू पार्टियां, दावतें, मुलाकातें, तो ये सब तो डन है भाई कि सैटरडे और संडे वाले दिन ना ये मसरूफियत रहने वाली है सभी लोगों की। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा ही प्लान किया है, क्योंकि भाई ईद का तीसरा दिन तो वर्किंग है, पहले दूसरे दिन कुर्बानी की नजर हो चुका है, बहुत सारे काम थे, तो अब प्लान यही किया गया है कि सैटरडे संडे को कर लेते हैं कोई मीटअप शीटअप, यही प्लान है या फिर कुछ है मुख्तलिफ, तो जो भी आपका प्लान है आप हमें जरूर बताएं। ईद का दूसरा दिन आप सबका कैसा गुजर रहा है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो ईद का दूसरा दिन आप सबका कैसा गुजर रहा है हमें जरूर बताएं। जब तक हम चलते हैं एक और ट्रैक की जानिब और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: को आराम, क्योंकि AGS Tubular Battery अपने कमाल बैकअप से दिखाए अपना काम। AGS Tubular Battery दिल को है
1: आराम। Meet and Mithas by United King। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
2: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
3: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
4: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.

ओके सो आई एम बैक विद द ट्रैक. तो मैंने कहा जी जब वापस आ रहे हैं तो खाली खाली क्या आते हैं, क्यों ना ट्रैक के साथ जो है वो वापस आ जाएं. और भाई लोगों ने भी अपनी हाजिरी लगाना शुरू कर दी है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हैं, ईद का दूसरा दिन भी बहुत मुबारक हो. खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ईद का दूसरा दिन. और दूसरा दिन इज ऑल्सो द मसरूफियात का दिन. अच्छा कहीं मसरूफियात भी और कहीं ना इस ईद के दूसरे दिन को सिर्फ आराम कर भी गुजारा जा रहा है, क्योंकि लोगों की प्रेफरेंस ये होती है कि अगर कोई दावत नहीं है, कहीं कोई मुलाकात नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग कहते हैं अच्छा फिर इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि सोकर ही ना वक्त को गुजारा जाए. तो ऐसी भी सूरत हाल चल रही है कहीं ना कहीं. अच्छा भाई हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाउ आर यू. वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी हम. कहते हैं आई एम गुड, ईद का सेकंड डे अच्छा गुजर रहा है, शाम को दोस्तों के साथ गैदरिंग है जबरदस्त. और कह रहे हैं कि ईद का एक, अच्छा जी ईद का एक शेर है आप और लिसनर्स को भी सुना दें. ठीक है जी, डन हो गया, सुना देते हैं. कहते हैं ईद का दिन है और हमको जस्तजू है आपकी, कुछ नहीं सिर्फ दिल को आरजू है आपकी. वाह भाई वाह. तो ये हो गया भाई इनका ईद का शेर जो कि इन्होंने हमें सुनाया है. कहते हैं लंच में दम कीमा है, आपका टू डेज लंच है, पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा. रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी. ऑल राइट भाई, रशीद खान ने हमें शेर भी सुना दिया, अपना लंच भी बता दिया, और ईद का दूसरा दिन कैसे गुजर रहा है और अपकमिंग प्लानिंग क्या है वो भी हमें बता दिया. तो भाई जबरदस्त हो गया है ये. वेरी गुड क्वेश्चन कि आपका दो दिन का लंच हो गया आपने नहीं बताया, तो मैं आपको बता देती हूँ. कल मेरे लंच में था भिंडी और पराठा था, और आज मेरे लंच में जो है ना वो खिचड़ी है. सो दिस इज इन माई लंच. तो कल का लंच भी हो गया और आज का लंच भी हो गया. तो ये है मेरे लंच की ताजा तरीन सूरत हाल. और अभी फिलहाल मैं चाय के साथ बिस्किट खाऊंगी, तो ये है अभी का मेरा स्टेटस. बिकॉज चाय मुझे लगता है कि खाली पीना जरा मुझे मुश्किल लगती है, तो मैं कहती हूँ चाय के साथ कुछ भी हो लेकिन कुछ हो जरूर है, वो बिस्किट है, वो केक है, या कोई भी चीज है, बट समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द कप ऑफ टी. तो ये है जी अभी का स्टेटस. और उसी के साथ साथ हम ट्रैक की जानेब भी चलते हैं. आप लोग भी जल्दी जल्दी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने. ईद का दूसरा दिन कैसा गुजार रहे हैं, कहीं आकर जाकर आराम कर या फिर कोई और प्लान है तो जरूर बताएं. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. जब तक शामिल करते हैं एक ट्रैक एंड देन विल बी राइट बैक.

0: यस एवरीबॉडी, सो जल्दी जल्दी आप लोग भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपने लंच का हमें जरूर बताएं। वैसे मूमन तौर पर देखा जाए तो एक बजे के बाद तो हम जिक्र लंच ही कर रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त हम प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में दाखिल हो चुके होते हैं आम दिनों में। लेकिन आज इस ईद के रोज हम आपके साथ मौजूद हैं 1 से 3 के दरमियान, जिस दौरान आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ईद का दिन कैसा गुजरा ये तो हम पूछ ही रहे हैं, लेकिन भाई लंच में क्या है ये जानना भी बड़ा जरूरी होता है। और ये कहना शायद मुश्किल होगा कि आज किसी का इस वक्त जो है वो लंच नहीं बल्कि ब्रेकफास्ट का टाइम है, क्योंकि देर से सोके उठे हैं। क्या ईद के दूसरे दिन भी ऐसा होता है? आई थिंक कहीं कहीं ऐसा भी होता है। और बिल्कुल भाई, आपकी छुट्टी का दिन है, आपका दिन है, जैसे चाहे आप गुजारना चाहते हैं बिल्कुल गुजारें, लेकिन हमें भी तो बताएं कि गुजार कैसे रहे हैं आप अपना आज का दिन, कहीं आकर जाकर या फिर आराम कर या फिर कुछ बहुत ही मजे का बनाकर। तो जब तक आप लोग हमें इसे बता रहे हैं, मैं चलती हूँ जरा ब्रेक की जाने, और आते हैं वापस हम ट्रैक के साथ।
1: It's 1:45 PM. This time check is brought to you by
2: आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: हाई ब्लड प्रेशर से आगाही, सेहतमंद माशरे की बुनियाद वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक, 18 से 24 मई के दरमियान सुनिए मालूमती प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान पर, एडको ग्रुप और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावुन से।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचे, वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। बिल्कुल भाई, दोस्ती भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिंदगी में, लेकिन दोस्ती सबसे अच्छी वो है जो कि कायमो दायम रहे हर पल हर वक्त हर हालात में हर सूरत हाल में। ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि आपको जब आपको उनकी जरूरत होती है या आप पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे दोस्त दोस्त नहीं होते, अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपके साथ हर पल हर दम रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि अच्छा दोस्त वही है जो आपसे 24 घंटे कनेक्ट रहे, लेकिन आजकल के मसरूफियात में दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट पॉसिबल कि आप 24 आवर्स जो हैं वो किसी भी शख्स के साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मसरूफियात है और कनेक्ट रहना बड़ा मुश्किल भी।

कि अच्छा दोस्त वही है जो आपसे 24 घंटे कनेक्ट रहे, लेकिन आजकल की मसरूफियात में दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट पॉसिबल कि आप 24 आवर्स जो हैं वो किसी भी शख्स के साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मसरूफियात है और कनेक्ट रहना बड़ा मुख्तलिफ बड़ा मुश्किल भी है, मुश्किल ही है बल्कि मुख्तलिफ तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा दोस्त वो होता है जो कि आपको महीने में एक दफा आपकी खबर ले ले और जब वो आपसे बात करना शुरू हो तो ओहो दुनिया जहां की किससे शुरू हो जाए। और ईद हो बकरीद हो ये सारे त्योहारों में तो ऑब्वियसली हम अपने दोस्तों को याद करते ही करते हैं, बल्कि सबसे पहला मैसेज ही उन्हें भेजते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि जी ईद मुबारक। और बड़ा मजा आता है ये ईद मुबारक के जो मैसेजेस जो होते हैं, जो कि हम चांद रात वाले दिन या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अपने करीबी खास लोगों को मैसेज कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और अब का टाइम ऑब्वियसली बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले ईद कार्ड्स बनाए जाया करते थे जो हम अपने कजन्स को दिया करते थे, अपने अम्मा अब्बा से जिद कर उन्हें खरीदा करते थे, उस पर कोई ना कोई कार्टून कैरेक्टर बना होता था या कोई फिल्म स्टार बना हुआ होता था और पीछे कुछ लिखने की जगह होती थी, फ्रॉम टू जो भी आपका कजन है उसका नाम लिखा, नीचे अपना नाम लिखा, बीच में ईद मुबारक लिख दिया, लेकिन वो इतनी एक्साइटमेंट होती थी उन कार्ड्स को खरीदने की और उन कार्ड्स को देने की, ये सारी चीजें बड़ी प्यारी लगती थी। अब तो इन सारी चीजों का ट्रेंड जो है वो ना होने के बराबर ही है, अब तो कार्ड्स भी आपको कहीं कहीं नजर आएंगे और जो नजर आएंगे वो, लेकिन कुछ भी कह लें, लाख हम व्हाट्सएप पर लोगों को मैसेज करें या टेक्स्ट मैसेज कर मुबारकबाद दे रहे हों ईद की या फिर उनकी सालगिरह की, लेकिन जो मजा ये कार्ड्स में होता है ना, कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि आप वाकई किसी को दिल से कोई चीज दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आज के इस दौर में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने दोस्तों को कार्ड्स देते हैं, क्या कोई है ऐसा मेरे लिसनर्स में भी जिसे कार्ड देना अच्छा लगता है? मुझे लगता है ये सारी चीजें देना भी अच्छा लगता है, और मुझे सबसे अच्छे वो लोग लगते हैं जो इन चीजों को संभाल कर भी रखते हैं। अक्सर औकात आपको अपनी पुरानी चीजें निकालें और इसमें जब आपको ये कार्ड्स और इस तरह की चीजें मिलती हैं तो आपको इतनी खुशी होती है, और फिर आप एक जानब में कंपेरिजन भी कर रहे होते हैं, यार तब और अब के दौर में कितना फर्क आ चुका है। तो ये तो हकीकत है, फर्क आ चुका है, जिद्दत आ चुकी है, घर बैठे बैठे बासानी आप सबको जो है वो विश कर लेते हैं, ईद भी और बर्थडे भी। लेकिन यार कार्ड का ट्रेंड ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था नहीं, स्टिल पसंद है, बिकॉज दैट इज रियली नाइस। खैर जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है आप लोगों के साथ, ईद का दूसरा दिन हम आपके साथ मना रहे हैं, आप सबको ईद मुबारक एक बार फिर से। तो कैसा गुजर रहा है आप सबका आज का दिन हमें जरूर बताएं। जब तक हम चलते हैं एक ट्रैक के जाने, बहराते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: facebook.com/fm247365 fm247365

Assalamu alaikum Pakistan and hello everybody, I am back again. हम आ चुके हैं वापस, आप सब सुन रहे थे प्रोग्राम ईद फीस्ट. उसी के साथ साथ एक मालूमाती प्रोग्राम भी आपने सुना FM 100 पाकिस्तान पर, क्योंकि भाई मालूमात भी आप लोगों तक फराहम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भाई बिल्कुल, मालूमात एक बड़ी जरूरी चीज है, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और FM 100 पाकिस्तान पर आप अवेयरनेस के तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वक्फे वक्फे से सुनते रहते हैं, क्योंकि भाई हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों तक बेहतरीन मालूमात फराहम की जाए जो कि आपकी जिंदगी में बड़े काम आए. तो मैं ही चाहती हूँ कि भाई FM 100 सुनने वाले तमाम लोग जो है ना वो इतनी मालूमात हासिल कर लें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खैर जी, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में दाखिल हुए तो काफी टाइम हो चुका है, और उसी के साथ साथ चलें जी एक तो ट्रैक की जानब चलते हैं. उसके बाद हम वापस आकर आपको कुछ एहतियात भी बताएंगे कि कितना गोश्त आपने खाना है, क्या एहतियात करनी है, इस पर भी होगी गुफ्तगू. लेकिन उससे पहले एक ट्रैक एंड देन विल बी राइट बैक.

हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। कैसे मिजाज शरीफ है? ईद का दूसरा दिन भाई बहुत बहुत मुबारक हो और यकीनन अच्छा दिन गुजर रहा होगा। गर्मी के बारे में क्या ख्याल है? निकाह के गर्मी हो रही है और ईद ईद पे मुलाकात होती है मेरे दोस्त से। महफूज भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से है? लव यू भैया, लव यू, ईद मुबारक बहुत बहुत। महफूज हमारा बहुत ही अच्छा आरजे और बहुत पुराना ताल्लुक कहना जरा अच्छा नहीं लगता। ताल्लुक किसी किस्म का भी हो सकता है लेकिन हमारा जायज ताल्लुक है माशाल्लाह। साथ ही स्ट्रगल। और महफूज भाई आज कहां पहुंच गए देखिए। अच्छा जनाब, मैसेज करेंगे आप बहुत ही सिंपल तरीके से, KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड कर देंगे 3636। 3 से 6 बजे का टाइम मेरा ख्याल से सुकून वाला टाइम होता है। घर में आराम से जो लोग बैठे हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन जो बाहर धूप में है ख्याल रखो यार अपना। और फातिमा अभी थोड़ी देर पहले शो करके गई है, बहुत ही जबरदस्त। फातिमा बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। देखो यार सारे आर्जेस कितनी मेहनत करते हैं ऐसी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा जनाब, ईद का मौका और जो जो दिन ईद के गुजरते जाते हैं तो जरा फीकापन आने लगता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। FM 100 में पहले दिन से ज्यादा जोश और खरोश दूसरे दिन जरा मुझे नजर आ रहा है, तो इस सिलसिले को जारी रखते हैं। और ईद का यह खूबसूरत ट्रैक मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों के लिए।

0: जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 अयाज अहमद के साथ और बहुत ही प्यार से मैसेजेस आना शुरू हो गए। आशा जी कह रही हैं ईद का दूसरा दिन आपको बहुत मुबारक हो और तमाम सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब और संजीदा भी हमें मैसेज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गर्म दोपहर में ठंडक का एहसास, मनपसंद शो करने का शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी संजीदा जी, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा पहला गाना ईद का पसंद आ गया भाई। और जवेरिया, अरे हाँ भाई दोस्तों, मैं आपको बता दूं भाई, आपका भाई जरा कसाई बन गया है जवेरिया सऊद के शो में, तो आप जाएं यूट्यूब पे तो वो जवेरिया रीलोडेड ये आपने लिखना है तो वो शो आपको नजर आ जाएगा। और वो संजीदा जी ने वो शो देख लिया है और वो कह रही है कि मजेदार लगा। अच्छा बाकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी बिल्कुल, उनके सवालात जो थे, जो क्वेश्चन थे वो स्क्रिप्टेड थे, बाकी जवाब जो थे वो जो दिल कर रहा है वो दे। आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया। और मिसेस फारूक कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और जनाब इन्होंने भी जो है वो शो देख डाला और बहुत तारीफ करी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और जवेरिया जी तो खुद इतनी हिट है, सुपर डुपर हिट। और पूछ रही ईद कैसे? ईद मेरी बड़ी मजे की गुजरती आप लोगों के साथ एफएम 100 पर। अच्छा जनाब टाइम चेक और छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: It's 3:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
3: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें, ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
4: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
5: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाए। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
7: 365 Active Yummy Adorable 7
8: प्यार तो सुनो यार।

जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और मैसेज कर रहे हैं आपके एचआर स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। अच्छा, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे यार मूवीज जो आई हैं इस ईद पर उसके बारे में भी आप कुछ अपने रिव्यूज दें। तो मैं देख रहा था हमारे एक बहुत अच्छे आरजे हैं लाहौर के, वो रिव्यूज देते हैं, लोगों ने बैंड बजाई हुई उनकी फुल टाइम। तो तुम कौन होते हो रिव्यू देने वाले, तुम्हें पसंद नहीं आई तो क्या है? लेकिन मैं एक सच्ची बात बताऊं, बहुत सही रिव्यू दिए हैं जो वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बात करते हैं जरा फिल्म की, लेकिन एक बहुत ही इस गर्मी के मौसम में इतना ठंडा सा गाना मैं आपको सुनाने वाला हूं, सुफियाना सा, सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।

बाबा जनाब क्या बात है, इतना पुरसकून। अच्छा जी, बड़े लोगों के जो कलाम होते हैं ना, ये भी आपके दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। जिनको नहीं भी समझ आता वो गौर से सुने तो बड़ा अच्छा फील होता है। जैसे कि संजीदा जी बहुत ही पसंद करती हैं इस तरह के, और पसंदीदगी का इजहार भी कर रहे हैं। इसके अलावा इरफान भाई कैसे मिजाज हैं आपके, ठीक हैं, खैरियत से कह रहे हैं, लाइव आ जाएं आप। इरफान भाई आपको लाइव आने की क्या, अच्छा कोई लड़की बोले तो समझ में भी आता है इरफान भाई आप मतलब क्या। लेकिन इनकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया आपका। और इरफान भाई आपको भी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक कह रहे हैं। अच्छा ईद कैसे गुजरी, निहाल साहब पूछ रहे हैं आपसे। जैसे सबकी ईद गुजरती वैसे ही नॉर्मल, लेकिन जरा गर्मी ज्यादा है इसलिए जरा सा एहतियात कर रहा हूं मैं। और गर्मी में कोशिश करें आप कि जरा पानी ज्यादा पिए, और धूप में कोशिश करें कम से कम जाए। अच्छा भाई ये जॉम्बीद तो जॉम्बी नाम सुना था हमने, जॉम्बीद मैंने पहली दफा सुना, देखी नहीं, लेकिन हमारे कुछ जानने वालों ने देखी और वो बता रहे यार क्या था? मैं आपको सच बताऊं, नॉर्मल फिल्म हमसे नहीं बन रही, ये 1980s के दौर की कहानी जॉम्बीज वाली, कहां अच्छी लगेगी, कहां अच्छी लगेगी। पहले सीधी सीधी तो फिल्में बना लो, पहले जो फार्मूला फिल्म है वही बन जाए, बड़ी बात है। हालांकि डिस्करेज नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अप्रिशिएट करो, मैं तो सीरियसली करता हूं, लेकिन नहीं अच्छी बन रही ना तब क्या करें, की कीता जाए होना। और दूसरी बात ये कि यार तो गाने शाने जरा मसा, जैसे हम लोगों के इंडियन फिल्में पसंद क्यों करते हैं हम लोग, गाने वानों की वजह से, फुल माहौल जरा शप शपा बदले शदले ये वो, या रोमांटिक है स्टोरी तो जरा अच्छी खूबसूरत जगह है, लाइवली सी हो, तो ये सब चीजें होती हैं, बस मैनेज ही नहीं हो रही। चलो खैर इसी तरह कभी ना कभी मैनेज हो जाएंगी, लेकिन मैं ये कहूंगा पहले सीधी सीधी फिल्में बनाना सीख लो। ये ज़ॉम्बीज़ वाले तो इंडिया वाले नहीं ट्राई कर रहे, और ये सिर्फ गोरों को ही वैसे सूट करती है क्योंकि उनके पास टेक्निक्स हैं और वो जानते हैं। हमारे वाले बेचारे कोशिश करें, लेकिन वैसे हालांकि टाइटल मैंने देखा जो ट्रेलर था वो कुछ बेहतर था, लेकिन फिल्म जो है ना बस वो थोड़ी माठी निकल गई। चलो कोई नहीं, होता रहता है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये है कि पहले सीधी फिल्में अच्छी अच्छी बना लें। राइट जनाब, गर्म मौसम, और इस मौसम में ये खूबसूरत सा एक और, हाय क्या कहने, मेरी तरफ से आप सब दोस्तों के लिए।

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं फिल्म 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। और सबा कह रही है कराची से, कह रहे आरजे अयाज और सबको और मेरे फेवरेट आरजे महफूज को भी ईद उल अजहा मुबारक हो। एक शो आरजे महफूज भाई ईद के लिए करते तो मजा आ जाता। महफूज भाई क्यों नहीं किया आपने, लोग फरमाइश कर रहे हैं। महफूज भाई के थोड़े से भरम भी है, ये मैं बता दूं आपको, हमें वो फ्री में नहीं करते, लेकिन ये है अर्दिल अजीज हमारे फेवरेट। वैसे महफूज भाई आपको एक शो करना चाहिए था ईद का, ये मैं भी आपसे कहूंगा। माशाल्लाह बहुत फैन फॉलोइंग है इनकी। गयासुद्दीन बलबन आ गए हैं मुल्तान से, मुल्तान की गर्मी के बारे में बताओ मेरे दोस्त। कहते हैं टिका के गर्मी होती है। वालेकुम सलाम, और पूरी टीम को भी सलाम कह दिए। चलिए जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए संगीता जी को तो ये गजल पसंद आ गई, फुल टाइम रंजिश ही सही, नो डाउट जनाब। शेर वेर अशार सारे कमाल। आज मैंने कोशिश की जरा इसी तरह की, जरा गर्म मौसम में जरा गाने कूल कूल जनाब को सुनाता हूं। और मिसेस फारूक मालूम है मुझे आपको, जो मेलोडियस गाने हैं जिसकी शायरी भी अच्छी हो म्यूजिक भी अच्छी हो वो आपको पसंद आए। राइट जनाब, सुन रहे हैं फिल्म 100 अयाज अहमद के साथ, साथ साथ जनाब मैसेजेस भी कर रहे हैं 3636 पर। अच्छा जी वो कह रहे हैं साइको के बारे में बताएं, बताता हूं मैं इस गाने के बाद।

बाबा क्या बात है, क्या बात है। मैं तो पता नहीं, मैं अकेले एंजॉय कर रहा हूँ या बाकी सुनने वाले भी कर रहे हैं। नादिया का मैसेज आ गया और कह रही क्या क्यू शीट बनाई है, मजा आ रहा है आपका शो सुनने में और साथ साथ काम भी कर रही हूँ। तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब, खैर मुबारक। अच्छा जी, गयास क्या कह रहे हैं? गयास कह रहे हैं ज्यादा नहीं, ओनली 45 डिग्री। अरे भैया बाहर मत निकलना, टिक्का ना बन जाए तुम्हारा। कह रहे हैं बहुत बहुत गर्मी है भैया मुल्तान में, अल्लाह खैर करे जनाब। अच्छा अच्छा, मिसिस फारूक क्या कह रही है? अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे। वाह वाह क्या बात है, चले जनाब ये अच्छी बात की और बहुत इंजॉय कर रहे हैं भाई। मिसिस फारूक ऐसे ही आप लोगों ने इंजॉय करना है, ये जो टाइम है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ जरा मजे से गुजरे और जो गाड़ी में सुन रहे हैं इत्मीनान सुकून के साथ। चले जनाब गाने पसंद आ रहे हैं, संजीदा जी क्या बात है, और ये भी भरपूर तरीके से एंजॉय करी। चले जब ये माहौल है तो इसी को कायम रखते हैं और एक और बहुत ही मेलोडियस ट्रैक शामिल करता हूँ मैं।

0: The best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: भाई जनाब मैसेजेस बिल्कुल पहुंच रहे हैं और गयासुद्दीन बलबन मिसेस फारूक आप सबका बहुत शुक्रिया जो इतना पसंद कर रहे हैं। अच्छा जनाब इतने मैंने आपको स्लो स्लो गाने सुना रहे हैं, एक जरा ये ट्रैक भी शामिल करते हैं और इसके बाद जनाब टाइम चेक है और चार मिनट की ब्रेक भी है और वापस आते हैं और मैसेजेस आपके पढ़ते हैं 3636 पर।

0: 案。
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: ईद उल अज़हा पर सफाई की रिवायत, महफूज हवाई सफर की जमानत, तवज्जो फरमाए। एयरपोर्ट्स के अतराफ कुर्बानी की बाकियात खुले आसमान तले न छोड़ें। ये बाकियात एयरपोर्ट्स के गिर्द परिंदों की तादाद में इजाफे का बायस बनती है और जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात में इजाफा हो जाता है, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। एयरपोर्ट्स के गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। आए जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाए, थोड़ी सी एहतियात से फजाई सफर को महफूज बनाए। डायरेक्टर जनरल Pakistan Airports Authority.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: Active. Yummy.
6: Adorable.
5: Seven.
6: I've got a crush on you.
5: Kya pyaas to suno yaar.

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और मिसेस फारूक है नी, दोनों मूवीज का मूड था, देख ले वैसे देखे हैं, जरा पता चले कि हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूँ या जो दूसरे कहने वाले हो सकता है वो गलत हो, ये चेक करने जाए आप, देखें बल्कि साइको भी देखें और ज़ॉम्बीज भी देख लें और बताएं, अपना रिव्यू दें कि भाई आप लोग गलत हैं, बेहतरीन मूवीज हैं, काश मैं ये सुन सकता। अच्छा जनाब, इसके अलावा नुमान भाई आ गए। नुमान कैसे हो मेरे भाई, ठीक हो, खैरियत से हो? बहुत शुक्रिया सर शो की तारीफ करने का। अच्छा यार, ये मैच थोड़ा सा मैं आईपीएल का बताऊं, कल मैंने जब यहां से जल्दी मेरी छुट्टी हो गई तो मैंने जाके थोड़ा मैच देखा, तो देखा एक बच्चा फुल टाइम इंडिया में हिट हो चुका, सूर्यवंशी, एक तो नाम ऐसा फिल्मी नाम है सूर्यवंशी, यार 15 साल का बच्चा, यार क्या वो खेल रहा है, 29 बॉल्स पे 97, बस वो छक्का ही मार रहा है। अच्छा बाज़ लोग कह रहे हैं यार नहीं ये 15 साल का नहीं है, 20 साल का, 25-30 साल का हो जाए यार, मैं तो छक्के मार रहा है जितने साल का मर्जी हो जाए, वो टीम को जिता रहा है, ये इसमें खुश है कि भाई नू है ये। दूसरा कह रहे हैं यार बिल्कुल बैटिंग विकेट है, बस वो उसी बच्चे के लिए बैटिंग, बाकी भी तो खेलने आए, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर, कहां कहां से आए दुनिया से, वो नहीं मार रहा, वो मार रहा, उसके लिए बैटिंग विकेट है, बाकियों के लिए नहीं है। यानी जब हमने किसी की खुल की तारीफ नहीं करनी हो तो ये है वो मसाइल। तो हालांकि वो हमारे दुश्मन कह लें आप, दुश्मन मुल्क हैं, लेकिन यार टैलेंट है, उसकी तारीफ करनी बनती है, खेल रहा है भाई अच्छा, और क्रिकेट मैं तो क्रिकेट लवर हूं सच्ची बात, विराट कोहली भी मेरे बड़े फेवरेट हैं, अब ये बच्चा भी मेरा बड़ा फेवरेट होता जा रहा है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है भाई, वाह वाह क्या बात है भैया। अच्छा भी गाना

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
2: सर, इतना भारी जानवर गिराया और गोश्त की कटाई भी आपकी मर्जी की,
3: तो ये लो कैश पेमेंट तुम्हारी मर्जी की।
2: कैश नहीं चाहिए आपके हाथ से, पेमेंट सिर्फ रात से।
4: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
5: FM 100। 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
6: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
7: एक्टिव यमी जबरदस्त।
8: ये प्यास तो सुनो यार।
9: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे FM 100। और क्या बात है रियाज भाई, बहुत आला। रियाज भाई ने कहा भाई ईद का पहले दिन जो है टिक्के बोटियां पता नहीं क्या क्या कुछ रखे, बिरयानी शेरें सब रख दिए, और ईद का दूसरे दिन गविस्कॉन और पता नहीं कौन को फैजल क्या क्या गोलियां रख दी है। भाई वाह भाई, पेट अपना समझ के खाना है, ऐसा ना हो कोई परेशानी हो जाए बाद में। अच्छा जी, एक और बहुत ही मेलोडियस ट्रैक शामिल करने जा रहे हैं। मैसेज करेंगे KHR स्पेस, टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर।

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100। और बिलाल हमें मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं अयाज भाई फोन कॉल्स मिस कर रहा हूँ। यार बिलाल भाई मैं भी बहुत मिस करता हूँ सीरियसली, भी वैसे कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाए मामला ईद के बाद। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है, फोन कॉल्स का जो है वो अपना मजा है, ये बात मानने वाली। लेकिन अभी ये है कि इस तरह के शोज में ना जरा गाने वाने आराम से, आपके मैसेजेस सुकून से, तो जरा फोकस रहते हैं। तो हर चीज में हम खुश हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बात आपकी ठीक है, फोन का भी अपना मजा है। बिलाल भाई मैं आपके साथ। अच्छा जनाब फेसबुक पे मैं देख रहा था वसीम अकरम को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, पर उन्होंने बॉलिंग स्टाइल में कंकरी मार दी शैतान को। अब नीचे आप मैसेज पढ़े, जो मैसेज कर रहा है जो बिल्कुल फारिग है, जिसको कोई दुनिया का बंदा नहीं जानता, वो कह जा रहे हैं ये क्या है भाई, मुकद्दस मकामात पे जाके ये क्या कर रहे हैं। भाई क्या हो गया, सीरियस भी हो जाओ, हर वक्त जो है ना जरा तपे रहते हो, गुस्से में रहते हो। एक आदमी है गया है वहां, उसने देखा चलो यार कोई बात नहीं, लाइट ले लो, लाइटर मूड भी होता है जिंदगी का। लेकिन नहीं साहब, मैसेज करने वाले जितने फारिग होते हैं उतने सेंसिटिव, क्या क्या कुछ नहीं लिख डाला उसको। तो मैं समझता हूँ यार खुश रहने दो सबको, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे, एंजॉय कर रहा है। वैसे भी मार रहा होगा वो कंकरियां सीरियस होके भी, और एक उसने बॉलिंग स्टाइल में मार दी कंकर, इतना क्या शोर मचा दो भाई। जनाब एक जरा बलोची गाना याद आ गया मुझे, और वो है कैसे,

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: वेलकम बैक। दादू से भाई अनवर पताफी भाई मैसेज करें, पताफी साहब की हाल है तो अड्डा, ठीक हो, खैरियत से हो? अयाज खान नहीं सरकार, मुझे अयाज अहमद कहते हैं। सब सुनने वालों को ईद मुबारक, खैर मुबारक। और गुलाम सरवर, गुलाम भाई मुझे अयाज अहमद कहते हैं भैया, पीएफ बेस मसरूर से मैसेज कर दें और कह रहे हैं आवाज कुछ ठीक नहीं आ रही सर, रेडियो चेक करें सर, रेडियो रेडियो में सर आवाज भी सही नहीं आ रही। वाकई सही कह रहे हैं आप, अब चेक करें आपके, मेरे ख्याल से मेरी आवाज सही आ रही होगी और थोड़ा सा माहौल हो गया अब चेंज। स्लो गाने मैंने आपको सुना दी, थोड़े से जरा फास्ट ट्रैक भी हो जाए।

हाय हाय हाय, क्या बात है जनाब, जबरदस्त ट्रैक। मैसेज बिल्कुल आ रहे हैं, शामिल करता हूं मैं, लेकिन जरा माहौल बना हुआ फुल टाइम। और एक और इसी तरह का जबरदस्त ट्रैक, और शेकी भाई याद आ जाते हैं, साथ में अलन फकीर भी याद आ जाते हैं।

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: सर, इतना भारी जानवर गिराया और गोश्त की कटाई भी आपकी मर्जी की।
2: तो ये लो कैश पेमेंट, तुम्हारी मर्जी की।
1: कैश नहीं चाहिए आपके हाथ से, पेमेंट सिर्फ रात से।
3: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें

हैं जनाब, वेलकम बैक. सुन रहे हैं फिल्म 104.47 हो गया टाइम. ड्राइव कर रहे हैं इत्मीनान सुकून के साथ ड्राइव कर रहे हैं, और घर में हैं तो क्या ही कहने. घर में नहीं, गर्मी में बाहर घूमने की जरूरत भी नहीं है. अच्छा जनाब, दादू से अंदर पताफी फिर कह रहे हैं आज भाई एक सिंधी गीत हो जाए. अदा सिंधी गीत चाहे मेरे भी रखा तो है, कोशिश करता हूँ. इतनी सारी क्यूशेट में गाने हैं, सिंधी भी है, पश्तो भी गाना रखा हुआ है, अरबी भी है, अंग्रेजी भी है, सारे हैं. अच्छा अब्दुल्ला भाई पूछ रहे हैं कि फरहान सईद की कौन सी मूवी. हाँ जी, वो मैंने नाम पता कर दिया. फरहान सईद की मूवी जो थी वो थी कौन सी थी भाई, लव दी सॉन्ग. हाँ, लव दी सॉन्ग. ये कुछ अच्छा वैसे एक बात है, कब आई ये फिल्म, कब आई, नहीं आई, पता ही नहीं चला. कोई प्रमोशन नहीं इसकी भाई. एफएम में आओ कुछ जरा, एक तरीका होता है यार हर जगह. बस मेरे ख्याल से एहसान कर दिया मैं. पर प्रमोशन बहुत आला चीज होती है, लोगों को पता हो कि भाई ये फिल्में आ रही है तो जाके देखे. मैं इस मामले में भी हम बहुत पीछे हैं. अच्छा इंडिया में इतने सारे शोज चलते हैं तो फिर उनकी फिल्में तो फिर क्या ही बात है. हमारे दो चार बस जगहों पे जाके बस हाजिरी पूरी करके आ जाते हैं. वो भाई जगह जगह जाए, मासिस में जाए और प्रमोट करें अपनी फिल्म को. दिल से होता ना जैसे, वो पता चले. ये भी ऐसा लग रहा है एहसान करना फिल्म को प्रमोट करने के लिए. तो ये जब तक चीजें हटेंगी नहीं मेरी हट जाएगी. मैं बता इसी बात पे ये खूबसूरत सा ट्रैक बड़े दिनों बाद नजर आया और क्यूशूट में शामिल किया. बता दादू भाई, दादू से अनवर भाई अभी थोड़ी देर में मैं प्ले करता हूं.

0: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: एंड
3: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
0: एंड
4: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
0: एंड
5: डेटॉल फूल्स, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
0: एंड
6: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, AGS ट्यूबलर बैटरी।
0: एंड
7: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
9: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
12: Active, yummy, adorable, zabardast.
13: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 आयाज अहमद के साथ और साथ साथ मैसेजेस करें के HR स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। ईद का भाई दूसरा दिन, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक वंस अगेन। और भैया बिल्कुल जोश कम नहीं होना चाहिए, सेकंड डे तो ज्यादा एनर्जी के साथ, और कल होगा तीसरा दिन, उसमें भी इसी तरह की एनर्जी होनी चाहिए। अच्छा भाई, लेकिन यह है कि गर्मी इतनी है कि एनर्जी जो है ना जरा आधी हो रही है। भाई मेहरबानी अनवर पताफी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिंधी गाना इनके लिए प्ले किया, खुश हो गया मेरा भाई। देखो ये छोटी छोटी खुशियां होती है, किसी में हम खुश रहते। अच्छा भाई, गर्मी की मैं बात कर रहा था, 33 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया अभी तक जो चल रहा है, और फील्स लाइक 41। यार ये फील्स क्या दिखा कुछ रहे, फील हम कुछ और कर रहे हैं, किस तरह का माहौल चल रहा है कराची में। यानी 33 आ रहा है लेकिन फील 41 है, तो बतलाइए। तो मेरा जनाब और कह रहे हैं भाई अपनी पसंद के गाने हमें डेडिकेट कर दे। वैसे तो मेरे काफी सारे पसंद के गाने, ये भी मेरा बड़ा फेवरेट ट्रैक है।

0: fire. Well, janab, I'm on fire. Ghayasuddin Balban, aapke liye khaas taur. Keh rahe Multan mein jo marzi temperature ho, feels like sitting in tandoor. Hi, hi. Baat sahi ki aapne. अच्छा जनाब टाइम चेक और तीन मिनट की ब्रेक नजर आ रही है, मिलते हैं ब्रेक के बाद.
1: इट्स 5:15 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो एंड शोबे जर्मनी, प्राउडली सर्विंग पाकिस्तान विद द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी फॉर 75 रिमार्केबल ईयर्स.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
3: मुसलसल तहकीक और यकसा मयार के साथ बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात की फरहमी, 160 साल से दुनिया भर में शफा की एक शानदार रिवायत. शोवे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो, 75 साल से पाकिस्तान में काबिले एतमाद.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.

है जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, गाना और इसकी शायरी हमारा बड़ा प्यारा दोस्त फैसल अली खान उन्होंने किया। फैसल अली खान मिस करते हैं हम आपको कभी कभी, बहुत जबरदस्त आरजे हमारे, और खास तौर पे जब ईद और इस तरह के ओकेजन आते हैं तो फैसल भाई हमें याद आते हैं। चलें कोशिश करते हैं, पता करें भी फैसल हैं कितने। चलें जी नेक्स्ट ट्रैक, और मैसेज कर रहे हैं 3636 पर।

0: जनाब, वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100। और दोस्तों, अभी मैंने एक खबर देखी, सोचा आपसे भी शेयर करूं। लेकिन उससे पहले मेरा एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त जो कि एफएम 100 की जान, एफएम 100 की पहचान रहे हैं, तो उनसे मैं कोशिश करता हूं आप सबकी बात भी कराऊं और उनसे ईद मुबारक ऑन एयर ही करते हैं। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम,
0: क्या हाल है? ईद मुबारक।
1: ईद मुबारक, आप कैसे हैं?
0: अल्लाह का शुक्र भैया। आप इस वक्त सब आपके फैन जो है ना, आपको सुन रहे हैं मेरे ख्याल से, और वो याद करते रहते हैं आपको। क्या हाल है, कहाँ कैसे ईद गुजार रहे हो फैसल भाई?
1: ईद गुजार रहे हैं यार, बस घर वालों के साथ हैं और बस घूम फिर रहे हैं।
0: वैसे बात तो सही है यार, बंदे वैसे बकरीद की जरा मसरूफियत ज्यादा ही रहती है, कभी बकरे ढूंढो, फिर उसका कसाई को ढूंढो, फिर गोश्त बांटना, फिर ये सारा काम बंदों का जरा हेक्टिक होता है। क्या कहते हो?
1: ऐसे ही है, आप बताएं कैसे, आपकी कैसी गुजरी?
0: भाई मैं तो ये वाले काम करने के बाद फिर एफएम 100 पे गुजरती है, और फिर इसके बाद ये है कि आपको मैं मिस कर रहा था आज बहुत शिद्दत के साथ, क्योंकि ये जो ओकेजन होते थे ईद के, अक्सर मुलाकात हो जाती थी। आप नहीं कर रहे लग रहा है ना? आप नहीं मिस कर रहे मेरा ख्याल से?
1: यार मैं मिस पहले करता
0: हूँ, अब नहीं करता। हाय मैं वजह समझ रहा हूँ क्या हो सकती, लेकिन यार आपके लिसनर तो मिस करते हैं आपको, आपके जो फैन
1: ना यार, मेरे लिए सर आंखों पे मेरे लिसनर फैंस जो हैं, मैं उनको बड़ा मिस करता हूँ सीरियसली।
0: ये बात है, ये तो बात है, काम वाम अपनी जगह, छोड़ना करना वो अपनी जगह, लेकिन जो आपके जो चाहने वाले हैं वो तो कोई बात, उनको ईद के मौके पे कोई बात कहना चाहे तो कह सकते हैं।
1: बस ये है कि सब खुश रहें और अपना ख्याल रखें, एंड आई लव ऑल ऑफ देम, लाइक ऑल माय लिसनर्स, ऑल माय फैंस जो पसंद करते थे, जो नहीं भी करते थे, उन सबके लिए, स्पेशली आपके लिए कि आप हमेशा याद रखते हैं और हमेशा दोस्त बन के आप दोस्ती का हक निभाते हैं।
0: अरे सर, आप तो दिल में, आप तो दिल में है फैसल अली खान, आपके साथ एक वक्त गुजारा है। भाई दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एफएम 100 का साथ जो है ना, हम दोनों का साथ ही शुरू हुआ था। क्या कहते हो?
1: सीरियसली
0: है ना, टीपीसी से। और माशाल्लाह मेरा भाई कहाँ कितनी तरक्की कर गया, और देखो मैं वही एफएम 100 पे बैठा हूँ, ये देखिए आप।
1: नहीं नहीं, अल्लाह ताला आपको, मैं आपने रात में आपका पॉडकास्ट देख रहा था जो आपने जबीरिया के साथ किया, वेरी गुड,
0: माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।
1: टैलेंटेड लोग जो है ना, उनकी कदर नहीं है।
0: ये बात तो वैसे आपने सही की, टैलेंटेड लोगों की कदर जो है ना बहुत ही कम है, ये आपने बिल्कुल 100% सही बात की। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, इंसान का काम है मेहनत करते रहना, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें आप।
1: बिल्कुल सही बात, जितना टैलेंटेड अयाज अहमद है ना, मैं समझता हूँ कि आज के टाइम पे ना, जिस तरह से लोगों को एंटरटेन करना और उस तरह से अपनी बातों में बातें कह जाना, सो कम लोगों के पास ये गुर होता है।
0: आई लव यू मेरी जान, आप बस इतनी कदर करते हैं, आप मुझे हौसला दे देते हैं ना, यही एक सबसे एनर्जेटिक बात लगती है मुझे आपकी। अच्छा भाई, महफूज भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं। महफूजुल्लाह सर।
1: जी वालेकुम सलाम महफूज, कैसे हैं आप? ठीक हैं, जबरदस्त,
0: बिल्कुल ठीक है, मजे में है। बस भैया मैं अभी अपने लिस्टर से ये कह रहा था कि यार ये जो पुराने आरजेज है ना, ये ईद के इन मौकों पे इसलिए बड़े याद आते हैं कि हम लोग सब मिलके साथ शो किया करते थे और बड़ा एंजॉय करते थे, वो टाइम बड़ा अच्छा था।
1: बहरहाल और महफूज का मैं कहूंगा, महफूज बड़ा ही टैलेंटेड, मतलब महफूज के अंदर मल्टी टैलेंटेड इंसान है, वो लिखता भी है, वो गाता भी है,
0: बिल्कुल ऐसे,
1: और वो परफॉर्म भी करता है, मतलब
0: अच्छा नाम का असर है ना, महफूज, इसने अपने आप को महफूज ही कर लिया,
1: वो बड़े छुपा रुस्तम है, अपने आप को महफूज रखता है,
0: महफूज रखा हुआ भाई ने, किसी तरह सामने नहीं आ रहा ये, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएंगे, ये भी एक ना एक दिन सामने आ जाएंगे। लेकिन मेरा फैसल, लव यू, अपना बहुत ख्याल रखो, दुआ में याद रखो, ठीक है?
1: ओके थैंक यू यार,
0: ओके भैया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। भाई जनाब, फैसल अली खान हमारे साथ, और अब वक्त हुआ है कहां पर, टाइम बताने का और ब्रेक की तरफ जाने का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिब याकान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: कमर में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
5: नई स्कीम,
6: कमिटी,
7: प्लाट बनाए फरो।
8: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
9: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: शरायत जवाबित लागू हैं।
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
1: एंड ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी
2: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं इंड्राइव कार पाई के रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: एंड
3: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
0: एंड
4: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
0: एंड
3: डेटॉल।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: सर, इतना भारी जानवर गिराया और गोश्त की कटाई भी आपकी मर्जी की,
3: तो ये लो कैश पेमेंट तुम्हारी मर्जी की।
2: कैश नहीं चाहिए आपके हाथ से, पेमेंट सिर्फ रात से।
4: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसी नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
5: 100 FM।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
6: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
7: शराय तो जवाबित लागू है।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
8: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
9: ये क्या है भाई?
8: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
8: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
11: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालिदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए यह पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
13: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
14: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
15: And live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
16: And payment usul kare haath ke haath barah raast.
17: And Dettol cool soap. Ye baddu phailane wale germs ko dur bhagaye.
18: And Eid ki har daawat mein rahe dil ko aaram. AGS tubular battery.
0: And HBL freedom account. Jahan khwab wahan HBL.
19: ख्वाब तो सब देखते हैं, बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
20: हमने अपने आप को 3 बार मौत देखा।
21: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
22: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
19: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
23: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
2: انسانی سمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام، ملک گیر کریک ڈاؤن جاری، ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں، انسانی سمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: FM 24/7 365
23: یہ پیاز تو سنو یار۔

फरमाए जनाब, सुन रहे FM 100 आयाज अहमद के साथ। देखते देखते 3 घंटे भी गुजर गए। सीरियसली FM आता हूँ, वक्त का पता ही नहीं चलता। बस जाते जाते एक दो ये ट्रैक्स जल्दी जल्दी सुनाता हूँ और उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं।

सुबह जनाब इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म। मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया इतनी प्यार इतनी मोहब्बत देने का, और कह रही हूँ वाकई हुई तो वक्त का पता नहीं चला। वह जनाब एक दफा फिर आप सब लोगों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और ईदें मनाते रहें। हम सबकी दुआएं आप लोगों के साथ। राइट जी, अयाज अहमद को दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा पामान।

0: पजामस में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग, इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
6: नई स्कीम,
7: कमिटी,
5: लाड बनाए फरोख,
7: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो। इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शरायतें जवाबित लागू हैं।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लेटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू हैं।
2: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
3: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
4: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ नाहिराज
0: एंड
3: डेटॉल फूल से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए
0: एंड
5: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम AGS ट्यूबलर बैटरी
0: एंड
6: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
0: एंड
5: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
7: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं याद रखें अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे खबरदार किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
13: Like us on facebook.com/fm247365
14: fm247365 fm100
15: 31 saal fm100 aapki awaaz assalamu alaikum pakistan
16: assalamu alaikum pakistan
17: this is your

0: Your location for maximum music.
1: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
3: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
4: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
5: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
2: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग, इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
3: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।

0: कमर में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
2: प्लाट बनाए फरोख,
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: शराइत जवाबित लागू है।
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
7: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
9: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
10: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
3: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
4: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त
0: एंड
5: डेटॉल फिल्टर ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए
0: एंड
6: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम एजीएस ट्यूबलर बैटरी
0: एंड
4: एच

It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: नाज में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL। आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL। आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो, और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं नॉट गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ईद लाउंज, और ईद लाउंज पे मैं हूं आपके साथ आज समीहा. और बहुत सारे लोग मुझे सुबह के वक्त सुनते हैं, आई डोंट नो शाम वालों को शायद आदत नहीं होगी. वैसे ये वाला टाइम ज्यादातर हमारे पास अयाज शो करते हैं और अयाज का शो बड़ा मजे का होता है. अयाज का वाहिद एक्चुअली शो है जो मैं सुनती हूँ, क्योंकि आरजे एक आरजे का दूसरे आरजे का शो सुनना भी एक बड़ा होता है कि हम बहुत क्रिटिकल नजरों से तो नहीं, मैं क्रिटिकल कान से सुन रहे होते हैं कि अयाज शो इज सो मच फन. और मेरी बस अभी क्योंकि ये टाइम शायद अयाज का है और ये स्टूडियो में अयाज का कब्जा होता है, स्पेशली ईद के सेकेंड डे, तो मुझे ऐसे अयाज के ही वाले गाने मैं ज्यादातर लगा रही हूँ. एनीवेज, तो खैर हमारा आज का टॉपिक ये है कि आप लोगों को बकरा ईद की सबसे ज्यादा कौन सी चीज अच्छी लगती है, और मतलब उसमें आपको जाहिर है कुछ लोगों को गोश्त, कुछ लोग इतनी शदीद गर्मी में भी प्लान्स बना रहे होंगे बारबेक्यू के. अच्छा, कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, दे आर ऑब्सेस्ड विद गोश्त कहीं भी. अच्छा, उनको कुर्बानियां देखने का भी होता है, कुर्बानी अच्छा और बड़ा इंटरेस्ट होता है. आधे कसाई से ज्यादा उनको ये खुद पता होता है, और कसाई बड़े गुस्से से देख रहे होते हैं, अनॉयड हो रहे होते हैं जब घर वालों को कुछ पता हो कि ये वाला गोश्त कैसे कटने वाला है. और तो वो ज्यादातर ऐसे घर ढूंढ रहे होते हैं जहां पे घर वालों को कुछ नहीं पता होता. और बल्कि बहुत सारे मौसमी कसाई भी निकले हुए हैं जिनको वो लगेंगे देखने में कसाई, लेकिन वो फिर मतलब कि उनको वैसे कुछ आता जाता नहीं होता, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कसाई जो है वो बन रहे होते हैं. तो प्लीज आप ये कोशिश करें कि आपके घर जो भी कसाई आए, अभी तो काफी हद तक कुर्बानी हो चुकी है, मगर कोशिश करें कि खानदानी कसाई आए, क्योंकि फिर खानदानी कसाई जो होते हैं जो मतलब नस्ल दर नस्ल कसाई का काम कर रहे हैं, उनको मौका दें. क्योंकि जब मौसम में कसाई है, दिल से नहीं काटेंगे, उनको जानवरों की समझ नहीं है, जानवरों से प्यार नहीं है. वो जो खानदानी कसाई होते हैं ना, वो बस पहचान जाते हैं जानवर को देखते ही कि इसमें टाइम कितना लगेगा, गोश्त कितना निकलेगा, मतलब दे आर वेरी गुड एट इट. तो ये आप वो गाय को बकरे को ज्यादा अच्छा पहचान लेते हैं, आप जो है वो पहचाने कि खानदानी कसाई कौन सा है. क्योंकि अभी कल मुझे बंदा गया था कंप्लेन कर रहा था कि यार हमारे कसाई को तो कुछ भी नहीं आता था. खैर, और आज कल जो जेंजी है उनको तो वैसे भी कुछ नहीं आता गोश्त की, और लड़कियां तो ओ माय गॉड, यू नो मैं तो कुर्बानी का गोश्त खा ही नहीं सकती, और मुझे तो गोश्त को देख के कुछ होता है. तो बेचारी अम्मा सर पकड़ के बैठ जाती हैं, इन लड़कियों का क्या होगा है कि शादी के बाद भी कुछ करेंगी. खैर, आजकल तो शादी के बाद भी खवातीन ऐसी करी है. देखो अपनी अम्मी को बोल दो, मैंने जिंदगी में कभी गोश्त को हाथ नहीं लगा दिया है. तो सासों को वैसे ऐसी बहुएं कम पसंद आती हैं जो गोश्त को हाथ नहीं लगा सकती, उनको तो ऐसी बहू चाहिए होती है कि यार जो साथ में हाथ बटाए, थोड़ा बहुत कटवा भी ले. एनीवेज, आज का अपना अलग दौर है, लेकिन आप गोश्त को लेके कितने ऑब्सेस्ड हैं हमें बता दें, और ऑब्सेस्ड नहीं भी हैं तो भी बता दें कि बकरा ईद में आपका क्या सीन है. बकरा ईद पे आपको मतलब कि मतलब व्हाट डू यू एंजॉय, एंड यू नो डू यू एंजॉय ईटिंग, आपको क्या कौन सी चीज खाने का शौक होता है. लोगों ने पहले से सोचा हुआ है, मैंने अभी तक सोचा हुआ है कि मुझे मटन का कीमा खाना है, अभी तक मैंने मटन का कीमा नहीं खाया. मैंने कलेजी खा लिया, बताओ, वो मेरा प्लान था. वन थिंग डाउन, कलेजी आई हैव हैड लाइक ट्वाइस, दो दफा मैं कलेजी खा चुकी हूँ, अभी मेरी लिस्ट में है. मैं पुलाव भी खा चुकी हूँ, वैसे बीफ पुलाव मैं खा चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरे मटन का कीमा इज स्टिल ऑन माई लिस्ट. तो अगर आप लोगों के आस पास मटन का कीमा है तो मुझसे रابطہ करें, हमें मैसेज करें. आप अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर, और या मुझे आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे या @RJSamiha इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं. हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का. और अभी हम आपके लिए कुछ अजीब गरीब गाने ही लगा रहे हैं जो मुझे भी नहीं समझ आ रहे हैं, लेकिन बस हम लगा रहे हैं, आइए सुनते हैं.

0: नोज में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहाँ खा वहाँ HBL।
4: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500।
5: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से जायद इनामात।
4: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
6: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात।
8: हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
7: आए अहद करें कि हम सिर्फ

शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाब इज सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग, इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 021-111-022-022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन DNCs को तस्लीम करना है।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: मिर्जा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
3: facebook.com/FM247365 FM247365

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोज करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।

0: Team Yellow. एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: facebook.com/fm247365.
1: FM 247365. FM 100.
2: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: Flash FM 24/7 365. FM 24/7 365.
1: और आज थैंक गॉड के ब्रेक्स जो है ना वो छोटी हैं और हम तो अब कुछ और गाने भी सुन सकते हैं, तो चलते हैं एक नेक्स्ट ही मतलब अच्छे वाले गाने की तरफ। आप लोग मुझे मैसेज करें, अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसको भेज देंगे आप 3636 पर। और मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी ना कि ईद वाले शो के अंदर ना हम कॉल्स लें, लेकिन क्या करें, तकनीकी वजूहात की वजह से हम कॉल्स नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, some other time, very soon. और अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये ट्रैक, आइए सुनते हैं।

ऑलराइट जी, आप सुन रहे हैं ईद लाउंज और मैं हूं आपकी दोस्त अजय समीहा। आज हम ये बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक वफाकी काबीना से और मुल्क को कौमी मईशत से बिल्कुल भी नहीं है, और ये है टॉपिक के बकर ईद आपकी कैसी गुजर रही है और आपकी बकर ईद पे आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या है। आप लोगों के पैगामात हमारे पास आ रहे हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, हाँ जी, तो फिर हम चलते हैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। हमारे पास काफी तादाद में मैसेजेस आ गए हैं। अच्छा जी, नसीम पटिया जी कह रही है आप जरूर खिलाएंगी मुझे नमकीन गोश्त, इंतजार रहेगा, जरूरी है। और उसके अलावा नजीर खोसो कह रहे हैं, हाँ जी नजीर, को ईद का सबसे खूबसूरत पहलू मोहब्बत और खुशी बांटना होता है। रियली? अच्छा, मोहब्बत और खुशी कैसे बांटते हैं? वो असल में गोश्त बांटना ही मोहब्बत और खुशी बांटना। मुझे ईद पर खानदान के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है, नए कपड़े पहनकर सबसे मिलना दिल को खुशी देता है। ईद की नमाज का माहौल बहुत पुरसकून लगता है, मजेदार खाने और मीठे ईद का मजा बढ़ा देते हैं। बच्चों की खुशियां और ईदी लेना बहुत अच्छा लगता है। रिश्तेदारों से मुलाकातें मोहब्बत को बढ़ाती है। ईद हमें दूसरे को माफ करना भी सिखाती है। मेरे लिए ईद खुशियों, दुआओं और अपनाइयत का खूबसूरत त्यौहार है। बड़ी अच्छी आपने बातें की, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई उर्दू की किताब में से ये मैंने एक पेज पढ़ी हूं मैं, जिसे बताते थे ईद का दिन की डिस्क्रिप्शन होती थी। खैर तो लेकिन अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ईद त्यौहार में भी लोग रिश्तेदार अक्सर नाराज ही रहते हैं, वो हमारे घर नहीं आया मिलने तुम्हारा बेटा, और इस बार गोश्त भी तुमने देर से भिजवाया, तुम्हें पता नहीं उस वक्त तक हम निकल जाते हैं। तो जिनको नाराज रहना है वो हर बार नाराज ही रहेंगे, और जो खुश होते हैं कहते कोई बात नहीं भाई, अपनी तकलीफ की भी क्या जरूरत थी करने की। और लेकिन मैं तो ले लेती हूँ चीजें, मेरे घर वाले कहते हैं समिया तुम हर चीज ले लेती हो, कभी तो बंदा मना कर देता है। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल मना नहीं करती, कोई देना चाहे खिलाना चाहे मैं तो ले लेती हूँ। और हालांकि आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा गोश्त ना खा सकती हूँ, ना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा मेरे गोश्त खाना, और ना मैं पका सकती हूँ, लेकिन लेने का मुझे बड़ा शौक है। एक पका पकाया मैं खा लेती हूँ। कीमा तो आई कैन ईट लाइक अनलिमिटेड कीमा। कीमा एक ऐसी चीज है कि बस बंदा, अब किसी भी, एक बार को बात बताऊं, कहीं भी हो आप देखिएगा किसी मेन्यू में कीमा हो तो सबसे पहले खत्म होने वाली चीज कीमा है, अनलेस के आपने उसे पता नहीं कोई खास अज्जा जाके उसकी मतलब तादाद बढ़ा दी है, या बिल्कुल भी जायकेदार नहीं है, लेकिन कीमा लोग पहली चीज है, लोग कीमा जो है वो जरूर खाते हैं। तो कीमा एक बड़ी फेवरेट चीज है मेरी। और अक्सर इंसान जो है ना, लोग आलू कीमा बना के कीमे की तादाद को बढ़ाना, मकदार हो गया या तादाद हो गया, खैर उसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाते, कीमे के पोर्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बकरे का गोश्त में जस्ट प्लेन कीमा, जस्ट कीमा हो, दैट्स इट, यू नो, नो आलू वालू, नथिंग। आलू तो खाते रहते हैं यार सारा साल, जस्ट कीमा इज लाइक वन पैशन। खैर अल्लाह ताला खिलाने वाला है, अल्लाह से बड़ी उम्मीद है मुझे कि मैं इस बार कीमा जरूर खाऊं, मटन का कीमा, ये मेरी ख्वाहिशात है। लेकिन जिंदगी में अगर ख्वाहिशात ही ना हो तो फिर क्या है, और पाकिस्तान में हम सिवाय खानों के अलावा और किस चीज का ख्वाब देख सकते हैं, हमें अन अचीवेबल ड्रीम्स लगते हैं बाकी। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खिलाता है और मेरा दिल चीजें खिलाता है। खैर ओके जी, और हम उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर हैं या जिन लोगों के रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं, वो बड़ा मिस कर रहे होंगे। बड़ी अच्छी बात है कि आप वीडियो कॉल कर करके उन्हें, जब भी आपके घर में खाना लगे, अच्छे से खाने बने, आप तस्वीरें उनकी भेजें और वीडियो कॉल कर करके उनको जलाएं। हो गए तुम, आज भी तुम जाके वही पुराना तो खाने बोरिंग सा सैंडविच या पिज्जा खाओगे, हम देखो यहाँ पे, क्योंकि बाहर वाकई में ऐसी क्रेविंग होती है ना अपने खानों की, के सोच है आप जस्ट इमेजिन कि मुझे वहां पे, मैंने 8 महीने बाद गोश्त खाया था, मतलब क्योंकि वहां हलाल हराम का बड़ा चक्कर था उधर, एंड आई हैड फूड आफ्टर 8 मंथ्स, मतलब मुझे लगा कि मैंने खाना ही शायद 8 महीने बाद खाया है। तो जब मैंने खा लिया था तो मतलब लोगों ने मुझसे कहा, समीहा तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करती हो, जाहिर है मुसलमान है, तो जब मैंने हलाल हराम का गोश्त नहीं खाया तो ड्रिंक तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, तौबा तौबा, लेकिन तुम्हारी वही वाली फीलिंग हो गई थी गोश्त खा के, जैसे कि कोई बंदा बहुत हाई होके, जो फीलिंग है ऐसा लग रहा था कि तुम, मेरी वही फीलिंग थी आज, मैं ऊपर आसमान नीचे कुर्सियों पर चढ़ चढ़ी के जा रही थी मैं, क्योंकि लगा था कि मैंने खाना खाया, मैंने गोश्त खाया है। तो गोश्त खाने के बाद इंसान अपने आपे में भी नहीं रहता, जो खास तौर पे बहुत दिनों के बाद, कराची वाले तो खैर बहुत दिनों के बाद मटन खाएंगे, है ना, हम मटन खाएंगे। और एक गाना भी है मुझे बहुत पसंद आया, वो किसी ने बनाया कि ए मटन प्यारे मटन पाक मटन, ए मेरे प्यारे मटन,
اس سے پہلے کہ میں اور بہ جاؤں مٹن کی یاد میں, میں گانا لگا دیتی ہوں. یہ والا جو گانا ہے یہ میں, مجھے بہت بار یاد آتا تھا گانا, میں ایموشنل اور سینٹی بھی ہو جاتی تھی اس گانے کو سن کے. اینڈ آئی تھنک آپ کو نسیم بیٹی جی کہ آپ کو بھی میرا قیمہ کی, میری بیٹی کی طرح دم کا قیمہ بہت پسند ہے. کیا بات کر دیے, دم کا قیمہ جس کو نا پسند ہے وہ بندہ مجھے نا پسند ہے. مطلب دم کا قیمہ کس سے پسند نہیں ہوتا, مطلب قیمہ ان ایوری فارم مجھے پسند ہے. اور رائٹ, خیر آئیے سنتے ہیں. اور یہ گانا ہم اقبال حسین کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اگین, اور ان کے بیٹے کو بھی جو وہاں پہ ہے, کیونکہ واقعی میں عید اپنوں سے ہوتی ہے اور جو لوگ باہر ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ مس کر رہے ہیں, ہم انہیں کم مس کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ سب چیزوں کو مس کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں گانا اور تھوڑا ڈانس بھی کرتے ہیں.

0: भगवान।
1: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।

0: Yan.
1: Take the team yellow. Take the team yellow.
2: ये क्या है भाई?
1: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
5: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: ईद उल अज़हा पर सफाई की रिवायत, महफूज हवाई सफर की जमानत। तवज्जो फरमाएं, एयरपोर्ट्स के अतराफ कुर्बानी की बाकियात खुले आसमान तले न छोड़ें। ये बाकियात एयरपोर्ट्स के गिर्द परिंदों की तादाद में इजाफे का बायस बनती है और जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात में इजाफा हो जाता है जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। एयरपोर्ट्स के गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। आए, जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाएं। थोड़ी सी एहतियात से फजाई सफर को महफूज बनाएं। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी।
4: Like us on facebook.com/FM247365.
8: और नाई जी, आप सुन रहे हैं ईद लाउंज और वक्त हो गया कि मैं लूं आपसे इजाजत। और थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें मैसेजेस किए। और जयपाल साहब का मैसेज आया हुआ था और जयपाल साहब कह रहे थे कि आपका उन्हें एक और गाना मुझे बताए। और मतलब मैं ये बोलूंगी कि शुक्रिया। और सेकेंडली मेरे शो की टाइमिंग्स वो पूछ रहे हैं और मैं यही कहूंगी कि जी, रात की दुनिया अलग है और दिन की दुनिया अलग है। रात को जो लोग रात देर तक जाके शो सुनते हैं वो सुबह कैसे शो सुनेंगे। खैर, मैं बता देती हूँ कि मेरे शो की टाइमिंग है मंडे टू थर्सडे सुबह 8 से 10 बजे तक, अगर आप सुबह के लोग हैं। और अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप मेरा शो सुन सकते हैं FM 100 पे। और अगर आप रात के राही हैं तो एंजॉय कीजिए अयाज का और नदीम के शोज हमारे पास, और अजमर शो भी जो रात गए शो करते हैं। और माशाल्लाह से FM 100 के सारे आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड हैं। मतलब वी आर द बेस्ट इन द बिजनेस पीपल। खैर, अल्लाह तौबा तौबा, गुरूर नहीं करना चाहिए लेकिन क्या करें, कसे नफसी का जमाना नहीं है दोस्तों। खैर, एक बार फिर मेरी तरफ से आप तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। और बकरीद में अपने मेदे का खास तौर पर ख्याल रखिए। खाने के बाद थोड़ी बहुत वॉक और चहलकदमी करते रहिए। हमें कुछ आप भिजवाना चाहें तो हमारे पास हमारे दोस्त मौजूद हैं। नाम बता दूं आपका? ستار صاحب ہیں وہ لے لیں گے چیزیں, ہم لے لیتے ہیں کچا گوشت, پکا گوشت, چانپے, ران, جو بھی آپ ہمیں بھجوانا چاہیں, سر آنکھوں پہ, ٹھیک ہے, انتظار رہے گا. اور آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک, اور جے پال صاحب کی ایک اور فرمائش, بہت شکریہ اقبال حسین, نصیب پٹیل جی اور نذیر خوجہ صاحب لوگوں کے میسجز کا. ایک بار پھر ہیو اے گریٹ گریٹ گریٹ عید, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

कहेंगे सुनियो आप सबको। अब सही है भाई, अब सही है। माइक डायरेक्शन बड़ी जरूरी होती है, वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, मैंने बोले यार आवाज सही नहीं जा रही है, अब सही जा रही है। मैसेजेस कर रहे हैं आपकी एचआई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। क्या क्या फोड़ चुके हैं अभी तक आप ये बताएंगे आप। कढ़ाई, नमकीन कबाब और दुम्बा कढ़ाई, ऊंट के गोश्त का क्या बनाया और चपली कबाब, कढ़ाई गोश्त, क्या क्या फोड़ चुके हैं आप ये बताएंगे आप मुझे 3636 पर। और वैसे ईद का दूसरा दिन तो होता भी कुछ सुनने में आया है, ससुराल डे टाइप का होता है, ससुराल में जाना बड़ा जरूरी होता है और ससुराल में आओ भगत भी होती है। हमारे समी साहब जो है हमारे बड़े प्यारे से रेगुलर लिसनर, तो ईद का दूसरा दिन उनके लिए ससुराल डे नहीं है, आजकल तो उनके लिए हर दूसरा दिन ससुराल डे है। बताता रहता कि भाई मैं आज ससुराल गया था नदीम भाई, कल भी कुछ खा पी कर आ रहे थे, वो कुछ बता रहे थे इसी तरह। खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, ईद में खुशियां, प्यार, मोहब्बत, तमाम चीजें ये तो बढ़ती ही हैं। और ईद कुर्बा है, इसमें इशार बहुत जरूरी है। लेकिन एक शख्स ने बड़ा प्यारा सा मैसेज किया है, इसके साथ साथ जो है अगर हम अपना तकब्बुर, अपना हसद, अपना दिल में मुनाफिकत जो है उसको भी कुर्बान कर दें तो क्या बात है, अपनों से मिलने तो क्या बात है, रूठे हुए को मना ले तो क्या बात है। हाय हाय हाय हाय हाय हाय। एक और बंदे ने बड़े मतलब पॉपुलर किस्म का, इकरार हुसैन, आपने नाम तो सुना हो, उनकी मैंने आज एक रील देखी, उसमें वाला उन्होंने बोला कि भाई मैंने आज अपनी अना की कुर्बानी दी है, और आप लोगों ने रील देखी होगी। खैर किसी को एहसास हो जाए ये बड़ी बात है भाई। नाहिद मुगल कह रही है, नदीम भाई मेरी फरमाइश आपने नहीं चलाई, अभी तो शो शुरू किया, फरमाइश की कब है। मोहब्बत खान और अनार दाना, ये गाने का नाम है या मुझे कोई रेसिपी बता रही है? नाहिद मुगल जरा बताना तुसी क्या कह रही हो। जाएंगे जनाब एक ब्रेक की जानेब।

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। ब्रेक सुनी, ये भी बड़ी जरूरी बात है, ब्रेक होनी चाहिए, हर मामले में ब्रेक होनी चाहिए, जिंदगी में भी ब्रेक होनी चाहिए, मोहब्बत में भी ब्रेक होनी चाहिए और खाने पीने में तो ब्रेक बहुत जरूरी है। तो लिहाजा इस ब्रेक को अभी आपने जो इस्तेमाल करना है वो खाने पीने के हवाले से इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि बस खाते जाओ, हाबड़ा पड़ जाए, खा जाओ भाई, आज चिकन कोरमा बना हुआ है, नहीं चिकन तो नहीं बना हुआ, मटन कोरमा बना हुआ है, फिर कल बीफ कोरमा, फिर परसों कढ़ाई, नालों नल सब खाया जा रहा है सुकून के साथ। घर में फ्रिज है ना, गोश भरा हुआ है ना, कहीं नहीं जाएगा गोश, आपके पेट में ही जाएगा। तो लिहाजा अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। चले आज एक सवाल भी फ्लोट करता हूँ, एक इंसान को 24 घंटे में कितना गोश्त खाना चाहिए, यानी कि पेट में कितना कोश उतारना चाहिए, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है भाई। और मौके की मुनासिबत से, यानी कि समझ रहे ना आप, मुझसे पहले आप सुन रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, बहुत बेहतरीन आरजे समिया सैफी को, और समिया हमारी बहुत सीनियर और बेहतरीन आरजे हैं, बहुत प्यारा बोलती हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे भाई, उनको ईद मुबारक, ऑन एयर भी कह रही हूं। और नाहिद मुगल के बाद इकरा कह रही हैं, सलाम कैसे हैं, सलाम टू ऑल फैमिली, आज का दिन कैसा गुजरा, आपने क्या खाया, फिलहाल तो आप बताए, कल तो मैंने जानू का बर्गर खाया था और थोड़ी सी मटन बिरयानी, दिल ही नहीं किया खाने का, आज के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताओ, आपने क्या, मैं सवाल करने वाला हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आरजी हूँ, मैं पूछूंगा आपसे, इकरा क्या क्या खाया, सच सच बताना। आसिफ अली शहजादा आ गया क्लिफ्टन से, कह रहे हैं सुने आपको और तमाम लिसनर्स को, और सलाम और ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। सर क्या हाल चाल है भाई, चाल तो आप देख कर ही बता सकते हैं, हाल ओके ठीक है, यानी कि बेहतरीन। दादू से अनवर पिताफी भाई भी आ गया है, सही सही कह रहे, हाजिरी कबूल करो, सलाम सही, सही वालेकुम सलाम। अनवर पिताफी भाई आपकी कचहरी वचेरी कहाँ है, वही कॉपी पेस्ट मैसेज भेज रहे हैं आप, ये क्या बात हुई है, आप जब कचहरी के बारे में बताते हो ना यार, हमारे सब दोस्त मिलकर सुन रहे और उनके नाम भी बताते हैं, और सही आप कहती बड़ा मजा आ रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम चाहेंगे कि हमें अच्छा लगे, यानी कि चले इसी बात पर आपको लेके जाते हैं एक बड़े ही प्यारे से ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक आप सबको बहुत पसंद है, और एलो फड़ो

वेलकम बैक। मेरी जिंदगी है तू, आंखों की नमी है तू, तू ही तू, तू ही तू, क्या आवाज है। एंड आई होप कि आपको ट्रैक पसंद आया होगा। मैसेजेस कर रहे हैं आपकी चाय स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, और उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। आज खाने में मटन कढ़ाई, दम कीमा और सलाद के साथ। वाह वाह वाह वाह जरीन नूर, क्या क्या खा रही हो तुम। अरे वाह भाई वाह। मैंने सवाल फ्लोट किया है कि कितना गोश्त जो है वो 24 घंटे में इंसान के पेट में जाना चाहिए, ये आपने बताना है। और इकरा कह रही है मैं सच बताऊंगी, आज मटन कोरमा और कलेजी। भाई मटन कोरमा हर जगह बन रहा है, क्या बात है भाई। खाई है आप भी तो बताएं। और एक सॉन्ग, एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर दी है। रिक्वेस्ट भी रिक्वेस्ट नहीं करो यार, आज बस ऐम ही चल रहे हैं जो गाने वही चलाने दो भाई, चलाने दो। कोशिश करूंगा, अगर चल गया तो अच्छी बात है। दादू सेन पर पिताफी भाई कह रहे हैं संजय गीत।

0: रिक्वेस्ट कर दी है, रिक्वेस्ट भी रिक्वेस्ट नहीं करो यार आज, बस ऐसे ही चल रहे हैं जो गाने वही चलाने दो भाई, चलाने दो। कोशिश करूंगा, अगर चल गया तो अच्छी बात है। दादू सेन पर पिताफी भाई कह रहे हैं सिंधी गीत हो जाए, सही सही आ पाओ और सिंधी गीत ना हो ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल चलेगा सही। आप ना भी कहते तो हम आपको, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, डेडिकेट करते। कैसी दिल लगी है तू, जबरदस्त मुश्क आ गई है, मुश्क ये क्या बात हुई यार, ना कोई सलाम ना कोई दुआ है भाई, हैं जी ते हैं जी, सलाम दुआ और बताएं तो सही क्या क्या फोड़ चुकी हैं आप, खा चुकी हैं आप, ये भी बताइए आप। और भाई कुर्बानी किन किन गया हुई, दिल की कुर्बानी की बात नहीं कर, पता चले कि हमारा दिल टूट गया, दिल कुर्बान कर दिया, ये नहीं बताना है आज किसी ने। खुशी खुशी की बातें करें और खुशी खुशी की बातें हमेशा, यानी कि समझ रहे हैं ना, अच्छी लगती हैं। और हाँ, कपड़े, नए कपड़े, कौन कौन सा कलर का सिलवाया, इकरा तुम बताओ जरा, और साथ में नाहिद भी बताएं। नाहिद का मैसेज जो सबसे पहले था ना, नाहिद मुगल का, वो मैं दोबारा उसकी जानी बढ़ रहा हूँ, क्योंकि
1: नदीम भाई मेरी फरमाइश नहीं चलाई।
0: नाहिद मुगल, फरमाइश क्या की थी वैसे, आपने जरा बताए तो सही, शो स्टार्ट करते ही आपने बोला मेरी फरमाइश नहीं चलाई, एक ही गाल हुई तो नाहिद जरा बताना क्या फरमाइश थी तुम्हारी। वैसे पता चले कि जी वो बीफ कोरमा बना दे नदीम भाई, ऐसी फरमाइशें मैं पूरी नहीं कर सकता, यानी क्या समझ रही है ना आप। हाँ और हाय हाय, अरे ऊपर सारे कमेंट्स ऊपर कर दिए, सलाम दो। अरे अच्छा सॉरी भाई, हमारा गलती हो गई भाई, गलती हो गई। अरे वाकई इतने सारे मैसेज आए हुए इनके तो, अरे वाह। मुझ कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ईद कुर्बान का दूसरा दिन मुबारक हो, रोज आपको लिखती हूँ किस नाम से पुकारूं, तो आप बताएं भी एने सोने हो। अरे हाय आगे क्या लिखा है, हैंडसम कहूँ या डैशिंग कहूँ, हाय एलर्जी या मुश्किशा शामन, मुश्क आप ठीक है और हम सोने हो सही है, एने सोने हो, यानी कि वैसे आपको जो दिल चाहे करे। कमेंट्स में परेशान ना हुआ करे, सिर्फ दो शो अटेंड करती हूँ, असमा हुसैन और नदीम अख्तर। असमा की क्या पता, समिया सैफी का भी शो अटेंड किया करें, समिया बहुत अच्छी हमारी आरजे हैं, इत्तेफाक से यहीं पर है। और क्या कह रही है नदीम अख्तर, इससे आगे के मेरी दुनिया नहीं है, समझा करें। मुश्क की तरफ से टाटा बाय बाय कमेंट शामिल करते रहें, ये क्या बात हुई टाटा बाय बाय, वैसे तो अभी आपको देखे बुला ही लिया। ईद आते ही हर लड़का खुद को क्या समझता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
2: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है। 100 FM।
3: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो,
4: ये क्या है भाई,
3: एक जैकेट शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो, दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो, और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो, तो क्या समझी,
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी, मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर

0: तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM247365 FM247365
4: वेलकम बैक आएंगे सुनियो आप सबको। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम मुश्क के मैसेजेस की जानिब थे। मुश्क, आपके मैसेजेस तो बेतहाशा हैं, वो सब शामिल करेंगे। और वो कह रही है आज के शो में जो शामिल करने थे मैसेज, वो मतलब आप साथ हो ना, वो मुझे पता है आप साथ हैं। और क्या बीफ बिरयानी आज नहीं खाई? बीफ बिरयानी नहीं, मटन बिरयानी खाई थी कल। बीफ बिरयानी नहीं खाई। आपने क्या खाया मुश्क? जरा दस्त ऐसे हैं जी, ते हैं जी। और आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई अनवर बिताफी भाई का मैसेज? उसके बाद अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, मोहनलाल सईं यूके से आ गए और कह रहे हैं ईद मुबारक, यौमे तकबीर जिंदाबाद। एक टाइम पे 5 किलो बकरा खाना चाहिए। अबे क्या हो गया भाई मोहनलाल, तभी ठीक है 5 किलो बकरा खाना चाहिए, मतलब बकरे का गोश्त खाना चाहिए। प्लीज प्ले बकरा सॉन्ग। बकरा सॉन्ग तो हम चला देंगे, लेकिन 5 किलो गोश्त खा जाएंगे क्या आप? वाह भाई वाह। अयूब आफरीदी भाई भी आ गए हैं, कह रहे जान जिगर या हबीबी आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कितना गोश्त खाना चाहिए अयूब आफरीदी भाई, जरा बताएं एक बंदे को एक दिन में कितना गोश्त खाना चाहिए? इकरा कह रही है कलर मैरून कलर एंड पर्पल। आप अपनी पसंद का सॉन्ग प्ले कर दें। करेंगे बिल्कुल करेंगे। और अलबेला बासी भी आ गया भाई शहजादा, कह रहे हाय बर्फी स्वीट नदीम भाई। जुमेरात का जब शो सुनता हूँ मुझे स्कूल के टीचर याद आ जाते हैं। कौन से टीचर बताओ बताओ? और जिगर छम छम समी और गुफरान भाई को खुसूसी सलाम। छम छम अभी दोनों नहीं है, इतफाक ऐसा है ना, गुफरान है ना समी आया अभी तक, यानी कि समझ आए ना। चलिए आपको एक गाना सुनाता हूँ। आप लोगों ने एक बड़ा जबरदस्त सा को स्टूडियो में गाना सुना था, कौन कौन था? आसी मजर, मतलब पॉपुलर ही उसी गाने से हुए थे, और उनके साथ थी वो मोमिना। वो ओरिजिनली गाना जो है वो उस म्यूजिक डायरेक्टर ने जो गाया हुआ है, उसका नाम है शुजा हैदर। क्या बात है भाई उनकी। तो शुजा हैदर ने वो जो गाना ओरिजिनली गाया था वो मुझे बड़ा पसंद है। तो इकरा ने कहा अपनी पसंद का गाना चला दे, तो इकरा मैं अपनी पसंद का गाना चला रहा हूँ, ये लो।

0: Welcome back. तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना ये दिल मेरा. Beautiful track and I hope you like it. दिल वाले को पसंद आया होगा. और अरे क्या बात है भाई, मुझको पसंद आएगा. थैंक यू इकरा करिए, नाइस सॉन्ग, थैंक यू. अयूब लाला कह रहे हैं कि जिगर बारबेक्यू एक बंदा आधा किलो खा सकता है और कढ़ाई एक पाव खा सकता है, या पांच किलो का समझ में नहीं आ रहा यार.
1: मेरा को भी समझ में नहीं आ रहा.
0: आसिफ कह रहे हैं सर अम्मी जान ने आज मुझे चमाटे से जबरदस्त किस्म की मार लगाई
1: जिसे मैं अभी तक दर्द हो रहा है.
0: यार जिंदगी भर मार याद करोगे, वैसे ऐसी हरकतें क्यों करते हो आसिफ, जिसे चंबे चमाटे पड़ रहे हो, यानी कि समझ रहे हैं तुम फिर कहीं चले गए होगे क्रिकेट वगैरह खेलने बगैर बताए, तो चंबे चमाटे तो पड़ेंगे. मैंने तुम्हें कितना समझाया था यार, बता के जाया करो. अयूब अफरीदी कह रहे हैं जिगर, अच्छा ये तो हो गया था मैसेज इनका. और संजू आ गई हैं, अरे क्या बात है, जल्दी जल्दी कह रही है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नदीम आफियत की अनगिनत दुआएं, दिल की खुशगवार धड़कनों की धक धक से खुश आमदीद कहती हूँ. कहिए कैसे मिजाज हैं भैया आपके, धक धक से मिजाज शरीफ जो है वो तेज हो गए हैं. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. आज माशाल्लाह से सारा दिन मेहमानों की आमद रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह. मेरी प्यारी जरीन नूर रवाब नौरीन बहना के लिए प्यार भरा सलाम, लाला के लिए अदब से सलाम कह रही हूँ. तो सलाम होता ही अदब से, बेदबी से कौन सलाम कहता है. मतलब एहतराम और प्यार आ रहा है इसमें. बेहतरीन आसिम अजहर का सॉन्ग है, यासिम अजहर का सॉन्ग नहीं है, बहुत दर्द लिए हुए सुना है. शायरी दिल छूती है, प्यार कभी भुलाया नहीं जाता. जो पहला दूसरा हो कितनी गिनती कोई भी शायरी कमाल की है. आपको ये बताऊं, ये मैंने शुरू में बताया, ये शुजा हैदर साहब जो हैं वो उन्होंने ये खुद गाया था पहले गाना, वंस अपॉन अ टाइम जब म्यूजिक आता था, म्यूजिक के प्रोग्राम्स आते थे, तो शुजा ने उसके बाद कोक स्टूडियो में ये गाना खुद प्रोड्यूस किया, यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर वो खुद थे, और उन्होंने आसिम अजहर और मोमिना से ये ट्रैक गवाया था. अपने दो गाने उन्होंने मिक्स किए थे, एक तो तेरा वो प्यार और एक नवाजिशें. ये दो गानों को उन्होंने मिक्स करके ये ट्रैक बनाया था, जो आसिम अजहर और मोमिना दोनों की वजह शोहरत बना. तो क्रेडिट गोज टू शुजा हैदर. थोड़ी देर के लिए रुख्सती चाहती हूँ, आती हूँ कुछ देर में. मेरा ख्याल है मेहमान आए होंगे संजू, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम आपके इंतजार करेंगे. आ गया शहजादा हमारा सन्नी, कह रहे अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे हैं आप, सलाम टू ऑल लिसनर. नदीम भाई आपने क्या क्या लपेट दिया खाने में. अरे कुछ नहीं, जानू का बर्गर बस. मैं आज सुबह दोस्त के घर कलेजी खाई थी, फिर अभी उसे दोस्त के घर दावत है, बिरयानी की मैंने हाथ हल्का रखा हुआ है गोश्त पर. तुमने हाथ हल्का रखा होगा, मुंह हल्का नहीं रखा होगा, खा जाती होगी. और एक गाने की फरमाइश की है, और हाय हाय ये तुम्हारा मैसेज जब गाना चलाऊंगा तब पढ़ूंगा. ईद के शो में इतने स्लो गाने नदीम भाई, और यार मिक्स चालते पे ने. संजीदा सिस्टर हम गरीबों को भी याद रख लिया करें. वैसे संजू अच्छी बात है, ये मेरा लाडला है समी, इसको तो याद कर लिया करो. जाएंगे एक ब्रेक की जानिब.
2: FM 100 टाइम चेक, इट्स 10 PM. पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक. अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना.
3: शराय तो जवाबित लागू है.
4: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग, इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर. और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ. रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ, सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.
2: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बता दे जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर. प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने हो. ईद मिनिया में मैं हूँ आपके साथ. आपका और मेरा साथ है 12 बजे तक और 12 बजे तक हल्ला गुल्ला जारी है सारी है. ईद की खुशियों को बांट रहे हैं. गोश्त तो आप बांट चुके होंगे. हमने बोला हम खुशियां बांट दें. अच्छा वैसे ईद के दूसरे दिन अच्छा हाँ पहले मैं अपना लिंक तो पूरा कर लूँ. खुशियां तो हम बांट रहे हैं तो ये शो और हम आपके साथ हैं 12 बजे तक. शो में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है. अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए क्यों चाहे लिखिए स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर. और बताइए सवाल मैंने फ्लोट किया है एमी कि एक इंसान को एक दिन में कितना गोश्त खाना चाहिए मैक्सिमम कितना गोश्त पेट में जाना चाहिए. लाला ने एक पाव बताया. एक हाँ हमारे भाई साहब ने 5 किलो बताया. हाँ बताइए कितना गोश्त खा सकते हैं. वैसे वैसे ये बता दे चले कितना एक पाव खा लेंगे आप आधा पाव खाएंगे किलो खा लेंगे आधा किलो खा लेंगे. अंदाजा तो होता है ना इंसान को जब बाजार में जाते हैं 1 किलो की कढ़ाई लाना वैसे तो उसमें आपने जितना फोड़ा होगा आपको तो पता होगा तो जरा बताइएगा ये. तो खैर जी ईद की खुशियां जो है वो हम बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ. गोश्त वोश नहीं बांट रहे. तो अब हम लेकर जाते हैं आपको एक ट्रैक की जानिब. लेकिन उससे पहले मैं समी के थोड़े से मैसेजेस सारे पढ़ लूं. अच्छा जी तेरा वो प्यार इंडस म्यूजिक के वक्त का सॉन्ग है. बिल्कुल सही कहा यार तू बहुत पुराना है भाई समी. इंडस म्यूजिक बिल्कुल सही कहा. ये इंडस म्यूजिक के दौर का गाना है. उस वक्त शुजा हैदर जो है वो उस वक्त एज अ सिंगर एंड मतलब सिंगर के साथ साथ कंपोजर भी खुद ही होते थे तो ये ट्रैक गाते थे. शुजा हैदर के छोटे भाई साहब बड़े भाई साहब जवाद साहब. हाय हाय हाय शुजा मैं तुम्हारे बारे में कितनी बातें कर रहा हूँ लेकिन शुजा साहब को कहाँ पता है भाई. शुजा हैदर साहब बड़े आदमी और मुझे बोलते नदीम भाई मैं आपके लिए आ जाता हूँ ले आता कुछ क्या मतलब कल से बर्गर पे जी रहे आप. हाँ भाई क्या करें यार लेकिन आज मैंने फली गोश्त खाया वो लोबिया टाइप की फली होती ना वो वाली फलियां गोश्त वो हमारी बेगम साहब ने बनाया था. वो किस टेक बनाया था. और समी ने एक और बात की है और ये क्या कह रहे हैं सुने जरा. कह रहे कमीज तेरी काली चला दीजिएगा प्लीज प्ले हमारी उन्होंने ब्लैक करेगा ब्लैक ब्लैक ब्लैक सूट पहना है इसलिए उन्हें डेडिकेट करना चाहता हूँ. अरे वाह क्या बात है भाई. समी की होने वाली जो दुल्हन है उन्होंने आज ब्लैक सूट पहना है तो उनको हम समी की जानिब से गाना डेडिकेट कर रहे हैं एल्लो फड़ो.

वेलकम बैक सुनियो हिकड़ो माणुआ बियो माणुआ ट्रियो माणुआ गाना सुना आपने और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। नाम है मेरा नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुनियो। और जनाब बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। कहां मार्क किया हुआ था मैंने, यहां अच्छा जी, उमेर का मैसेज हो गया था, यूब लाला का मैसेज भी हो गया था, जिंदगी का मैसेज भी हो गया था। जब तक मैसेज ना करूं आप याद नहीं करते, तो ये इस पर मैंने चर्चा कर दी थी। मीर बादशाह बलोच कह रहे हैं ईद मुबारक पूरे एफएम 100 की टीम को, तमाम लिसनर्स को। नदीम भाई एक पाव गोश्त खा सकता है, एक पाव। ओके जनाब। तो बशीर साहब आप एक पाव ही फोड़ते हैं, ज्यादा फोड़ने से मुराद ये कि खाना पीना। और आपकी आवाज बहुत अच्छी है नदीम भाई, मिस्टर उमेर कह रहे हैं। उमेर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और कह रहे हैं कि एक गाना मेरी पसंद का भी होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, मैनो डोला याद आवे ना। मिस्टर उमेर ये गाना किसने गाया है, क्यों गाया है, किस लिए गाया है, कहाँ गाया है, सिंगर कौन है, ये तो बता दें। और कह रहे हैं आप बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शहजादे। तामीर साहब आ गए हैं और हमारी प्यारी सी अनाया के साथ भांजी, और भांजी दुआ। तो तामीर साहब आपको वेलकम कहेंगे और अनाया बच्चे को भी और दुआ को भी। उम्मे रुबाब कह रहे हैं नदीम आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ा मालूम, मुझे अच्छा नहीं लगा। शुमा खूबी मेरे दुनिया आपके साथ संजू यू और नसरीन पटेल सलाम। उम्मे रुबाब हम आपका सारा मैसेज पढ़े हैं, संजू वाला भी, नसरीन पटेल वाला भी, हम सब मैसेज पढ़े हैं। हम आपको बोले हैं कि हम आपको गाने भी डेडिकेट करेंगे। आप कैसा बात कर रही हैं, आप इधर उधर घूम फिर रही होंगी या कोई गोश वोश खा रही होंगी आप, यानी कि समझ रही हैं ना आप। तानिया हसन जी भी हमारे साथ हैं और सुन रही हैं, कह रही है मुझे पता ही नहीं था भाई कि आपका शो हो रहा है। तानिया जी आप मसरूफ लोग हैं, हमने तो ईद से पहले ही बता दिया था कि ईद के पहले दिन 9 से 12, दूसरे दिन भी 9 से 12 आपके साथ होंगे। कल से रेगुलर टाइमिंग पर शो करेंगे हम, जो हमारी शो की टाइमिंग होती है। लेकिन कल आपको ये बता दें कि वो वाला शो नहीं होगा, गजल वजल का, ऐम ही गजले वजले सुन लेंगे। लेकिन कल क्योंकि ईद का सिलसिला जारी और सारी है तो उसको ही आगे लेकर चलेंगे। तो तानिया जी ने एक खबर दी है, बड़ी जबरदस्त खबर है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे हम। लेकिन फिलहाल हम खुशियां ही बांटे तो ज्यादा अच्छा। समी क्या कह रहा है भाई, नदीम भाई वैसे मुझे तो मीठी ईद से ज्यादा इस ईद पे मजा आता है। जाहिर है आपको खाने पीने को ज्यादा जो मिल रहा होता है। नदीम भाई आता हूं जरा बिरयानी लपेट के दोस्त के घर से, आपको याद करूंगा, पेट भर के खाना है, लेकिन जरा गोश्त खाओ उतना जितना बस हजम कर सको। संजू कह रही हैं, अरे संजू बहुत कुछ कह रही हैं भाई जी। जनाब आ गई छोटे समी, छोटू समी भैया और हमारी दुल्हन भाभी के लिए बेशुमार दुआएं, जीती रहें। और कभी कोई तहरीर आपके दिल को भा जाती है, और एक तहरीर इनको बहुत अच्छी लगी है और कहती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमें ये समझ में आने लगता है कि जिंदगी में हर वो शख्स जरूरी नहीं होता जिन्हें हम जरूरी समझकर शामिल कर लेते हैं। अरे आपको क्या बताएं, जिंदगी में हमारे ऐसे भी लोग शामिल हो जाते हैं जिनको हम बड़ा जरूरी समझते हैं, और वो महसूस कराते हैं कि हमारी आपकी जिंदगी में जगह बहुत आगे तक है, मगर अचानक छोड़कर चले जाते हैं। और डायरी से कुछ लिखती है कि जो शख्स रूह में बस जाए वो कभी दिल से नहीं निकलता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो सिर्फ साथ नहीं रहते बल्कि हमारी जात का हिस्सा बन जाते हैं। ये वही वाली बात होगी, वैसे मैंने ये पढ़ी नहीं थी जो मैंने कही थी। वो हमारे ख्यालों में, हमारी दुआओं में और हमारी खामोशियों में भी जिंदा रहते हैं।
وقت گزر جاتا ہے، فاصلے بڑھ جاتے ہیں، مگر ان کی یاد دل کے کسی کونے میں ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ وہ لوگ روح میں بس جائیں، وہ نہ چھوڑتے ہیں نہ چھٹتے ہیں، بس ہمیشہ محسوس ہوتے رہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہی والی بات ہو گئی جو اتفاق سے میں نے اپنے الفاظ میں کہی تھی۔ یہ میں نے آپ کا میسج بعد میں پڑھا سنجو، یقین مانے اس کو دیکھ کر خیال نہیں آیا۔ نورین آ گئی میری بہن فیصلہ آباد سے، کریں السلام علیکم ندیم بھائی، عید کا دوسرا دن مبارک ہو۔ تمام ہی حسین سماعتوں کو بھی میری طرف سے عید الاضحیٰ کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو۔ جائیں گے ایک بریک کی جانب اور اس کے بعد ان کا پورا میسج ریڈ کریں گے۔

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। मैसेजेस कर रहे हैं आप 3636 पर, और मेरे बाप आपको गाने पसंद आए हैं या नहीं आए हैं हमें मैसेज करके आप बताइएगा। ईद की खुशियां जनाब, हम एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं गोश के हवाले से, बता रहे हैं ज्यादातर लोग आधा पाव बता रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसे भी देखे हैं अपनी आंखों से लोग देखे हैं कि जो तकरीबन मेरा ख्याल है 2-2, 3-3 किलो गोश्त आराम से खा लेते हैं। आराम से बोल रहा हूं, ये 2-3 किलो गोश्त बहुत होता है। मतलब एक नॉर्मल फैमिली अगर 5-6 अफराद की फैमिली है तो वो आधा किलो 1.25 किलो गोश्त के साथ जो है घर में एक पकवान पक जाता है और वो 2 टाइम चल जाता है। ऐसा ही है ना, आधा किलो 1.25 किलो गोश्त के साथ। और बहुत ज्यादा खाने वाले हैं, मतलब ज्यादा गोश्त खाने वाले हैं, गोश्त लवर हैं, तो 1 किलो गोश्त भी जो है घर में अगर पक गया है तो वो आराम से 2-3 टाइम 5-6 अफराद घर के जो है वो खा लेते हैं। मगर एक बंदा जो है वो 2-2 किलो गोश्त 3-3 किलो गोश्त ऐसे ही खा लेता है। नदीम भाई, महक मलिक ने ये गाना गाया है। अच्छा उमेर कह रहे हैं, उमेर अभी ये गाना फिर ढूंढना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये गाना चल सकेगा या नहीं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। जरीन, हम संजू को गाना जरूर डेडिकेट करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। अयुब लाला क्या कहते हैं, शेर शेरनी से नहीं डरता चूंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है चूंकि प्यार नहीं करता, शादी करता है। तो आप बताएं आप क्या हैं। आप तो सभी से डर रहे हैं। शादी किए बगैर डर रहे हैं आप, मतलब प्यार में एहतराम में। अयूब लाला इस पर आप क्या कहेंगे जरा बताइएगा मेरे को। मुश्क आ गई है आज शो में, संजू जल्दी आ गई हैं। मुश्क जी हाँ जी आ गई हैं। मुश्क को मैंने गाना डेडिकेट किया या नहीं किया पहले ये बताओ। मुश्क नहीं किया तो मुश्क को गाना डेडिकेट करेंगे अभी नहीं, फिलहाल जाएंगे ब्रेक की जाने।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शरायत जवाबित लागू है।
2: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फूट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18-35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेदरेज। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एनएल वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

0: निभाएं, थोड़ी सी एहतियात से फजाई सफर को महफूज बनाएं। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी।
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। मैसेजेस कर रहे हैं आपके, चाहे स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। अच्छा जनाब, मैसेज में पढ़ रहा था मुश्क का, और वो कह रही है कि कल के शो की टाइमिंग क्या है। मुश्क, कल के शो की टाइमिंग जो है रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपके साथ होंगे। आप तो ठीक हैं? और जी मैं ओके ठेका की हो गया। मैंने आपसे मैंने पूछा, मैंने आपको गाना डेडिकेट किया था या नहीं किया था, ये बताएं आप मुझे। सलीम भैया जीते रहे, ये कह रही है हमारी संजू। और जनाब मुश्क का मैसेज केदार किया है यार, ये नहीं किया। चलें, आपको नहीं किया तो आपको एक बड़ा जबरदस्त ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं, और मुश्क के नाम ये ट्रैक एलो फड़ो।

0: स्टेशन पर है। मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाथ है। आइए इस खतरे के खिलाफ मुख्तलिफ हों। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान है। AMF का साथ दे, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: ईद उल अज़हा पर सफाई की रिवायत, महफूज हवाई सफर की जमानत, तवज्जो फरमाएं। एयरपोर्ट्स के अतराफ कुर्बानी की बाकियात खुले आसमान तले न छोड़ें। ये बाकियात एयरपोर्ट्स के गिर्द परिंदों की तादाद में इजाफे का बायस बनती है और जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात में इजाफा हो जाता है, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। एयरपोर्ट्स के गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। आए जिम्मेदार शहरी होने का

0: Welcome!
1: Sorry.
0: Kiesa ka na ta batao.
1: अच्छा जनाब मैसेजेस कर रहे हैं आपके जो है स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर आपके मैसेजेस भी मेरे सामने आ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ बात हो रही है ईद के हवाले से ईद की खुशियों के हवाले से ईद की खुशियों को किस तरीके से आप सेलिब्रेट करते हैं सिर्फ खा पी के ही करते हैं यार या कुछ और भी इफ्तिखार साहब आ गए हैं और कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ओके ठीक है जनाब जनाब शो की टाइमिंग चेंज हो गई है क्या नहीं जनाब ईद पर स्पेशल शो होते हैं स्पेशल शोज की टाइमिंग होती है आज मैं अपने रेगुलर शोज के साथ नहीं बल्कि ईद के स्पेशल शो ईद मीनिया के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूं ईद के पहले दिन रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और आज भी रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके साथ हूं यानी कि समझ रहे हैं ना आप अब कल से जो है वो रेगुलर टाइमिंग होगी और कुछ कह रहे हैं वो क्या मेरी मोहब्बत को मोहब्बत कह लें मोहब्बत मेरा ख्याल है मोहब्बत ही लिखना चाह रहे हैं क्या मेरी मोहब्बत से नफरत ये नफरत होगी क्या मेरी मोहब्बत से नफरत है ही उसे मेरा क्या है कसूर मैं तो हूं मजबूर इसका मतलब ये हुआ क्या उसे मेरी मोहब्बत से क्यों नफरत है मेरा क्या कसूर है और मैं तो मजबूर हूं इस तरह तो होता है इस तरह के कामों इस हवाले से इफ्तिखार भाई मैं आपको एक बात बताता हूं बड़ी मजेदार किस्म की बात है बहुत मुश्किल बात है मगर हकीकत है उसको आपकी मोहब्बत से नफरत क्यों है आप मोहब्बत कर रहे हैं वो आपसे नफरत कर रही है ठीक है ना तो अपनी इज्जत नफ्स यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गिराओ यार क्योंकि वो आपकी है ही नहीं आपका दिल आ गया है आप उसके पीछे पीछे जितना भागोगे उतना ही जलीलो ख्वार होगे हकीकत बता रहा हूं मैं आपको एक दफा कह दिया उसको कि भाई मुझे आपसे मोहब्बत है लेकिन वो आपसे नफरत करती है तो आप उसको छोड़ दो उसके हाल पर हकीकत बता रहा हूं अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है एक होती है ना इंसान के अंदर की इज्जत नफ्स होती है सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ठीक है ना उसको कायम दायम रखो अगर वो आपकी होगी ना खुद ब खुद पलट कर आएगी और अगर आपकी नहीं हुई तो नहीं आएगी तो कम से कम आपकी इज्जत जो है इज्जत नफ्स जो है वो तो कायम दायम रहेगी और आप को और कोई मिल जाएगा यार है भाई दुनिया है पता नहीं आपके लिए क्या कौन कोई बना हो तो इफ्तिखार भाई ये मेरा मशवरा है आगे आपकी मर्जी जो दिल चाहे करें नदीम भाई ये गाना सुनवा दे भाई प्लीज मैंने कल रात आपको रिक्वेस्ट की थी काकाला क्या लिखा हुआ है यार काकाला शाह काला अच्छा मैंने कल भी काला शाह काला मेरा काला ही है ये तो नहीं है कहीं गुलाम सरवर साहब ये जो मैंने बात की यही वाला गाना है काला शाह काला तो आप दोबारा मैसेज कीजिए और बोले हाँ यही गाना है और कुलसूम नवाज भी हैं इनके साथ पीएफ है कुलसूम नवाज अच्छा जी मसरूर बेस से इन्होंने मैसेज किया ओके ठीक है और अलबेला बासी अगेन आ गए हैं और कह रहे हैं बच्चे होने के बाद बीवी शौहर के लिए सिर्फ काम वाली मासी बन जाती है ना जी ना ऐसी बात नहीं यार ये तो आपकी काम वाली मासी आपने अपनी बेगम को बना लिया अलबेला साहब एक ये जी गला कर दिया यार बहुत प्यार कर दिए है बहुत प्यार कर दिए है खिदमत कर रही होती है ना सिर्फ आपकी अपने बच्चों की लेकिन आप जिस पैरा में बात कर रहे हैं ना यानी कि मैं समझ रहा हूँ सुनियो आज ईद है एक सॉन्ग हो जाए सलीम मेमन ने फरमाइश कर दी है क्या बात है सुनियो क्या बात है अमीन आ गए भाई अमीन साहब इतनी देर से कहाँ गायब थे आप अरे तानिया जी आप भी कोई फरमाइश कीजिए ना तानिया जी फरमाइश ही नहीं करती बस शो सुनती रहती हैं और प्यारे प्यारे से मैसेज करती रहती हैं कमेंट्स देती रहती हैं अच्छे अच्छे से स्वीट्स ही हैं हमारी तानिया हसन जी। तो तानिया हसन जी आप भी अगर कोई फरमाइश करेंगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ यार, देखो हैरत नहीं हो रही, वरना मैं कह रहा था यार बस कर जो यार, कितनी फरमाइशें करोगे यार। अमीन कह रहे हैं उमे रुबाब कबाब शबाब बना, कबाब शबाब बनाया है, नदीम भाई को भेज दें, मैं नदीम भाई रिसीव कर लूंगा, ताकि बोटी भी साथ में भेज दीजिएगा, मालूम हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत सही जा रहे हैं आप शॉपर लेकर यकीन माने घूमे, कोई ना कोई आपको कबाब शबाब जरूर जो है, और आवाज लगाइएगा किसी ने कबाब बनाए तो दे दे बाबा, मिल जाएंगे बहुत सारे कबाब कबाब शबाब बहुत मिल जाएंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। संजू क्या कह रही हैं भाई, मुत्तफिक हूँ, मोहब्बत में इज्जत नफ्स जरूरी है, अगर सामने वाले को आपकी चाह नहीं तो राह बदल लेना बेहतर है। वाह भाई वाह, हमारी बात से तवाक किया आपने, थैंक यू। बाज लोग जब किसी को हासिल नहीं कर पाते तो सामने वाले को गलत अल्फाजों से क्यों पुकारते हैं, अजीब से नाम रखते हैं, क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा होता है, ये फैक्ट है, और खुसूसी तौर पर मैं खवातीन के हवाले से बात करूंगा, लड़कियों के हवाले से बात करूंगा, कि लड़के जितने भी इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई अगर लड़की पटी तो दुनिया से अच्छा कोई है ही नहीं उससे, और अगर नहीं पटी तो उसके लिए इतने गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और इल्जामात, तोहमतें, ये तमाम चीजें जारी और सारी होती है, दोस्तों के साथ बातें, चेमगोइयां, दिस इज रॉन्ग। और आपको बताऊं ये इतना बड़ा गुनाह है कि जिसकी हद नहीं। हर इंसान का अपना दिल है, आपका दिल अगर किसी पर आ गया ठीक है ना, तो अच्छी बात है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन सामने वाले का जरूरी थोड़ी है कि आप पे आए, और अगर नहीं आ रहा आप पर दिल तो जबरदस्ती थोड़ी है कि वो आपसे मोहब्बत करे भाई, क्यों भाई? जाएंगे एक ब्रेक की जानेब।
2: FM 100's time check. It's 11 p.m.
3: Meet and Mithas by United King. इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर, और सिर्फ यही नहीं इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ, रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
2: Like us on facebook.com/fm247365 Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
1: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। हाय हाय, तो सुनियो अभी हम जाएंगे जिंदगी की जानिब। जिंदगी ने एक गाने की फरमाइश की थी, और फरमाइश नहीं थी, उन्होंने कहा था कि अपनी आवाज में कुछ सुना दीजिए प्लीज, तो कोशिश है, हो सकता है कि उनको पसंद आ जाए।

वेलकम बैक कहेंगे। तो अपनी आवाज में हमने सुना दिया जिंदगी को गाना, और उम्मीद करते हैं कि उनको शायद पसंद आया हो। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैसेजेस कर रहे हैं आपके शायद स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। और जनाब बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। और जी इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, नदीम भाई वो फीमेल नहीं है, इन चक्रों में मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेल है भाई की तरह है। बिल्कुल मुझे अब याद आ गया है, आपने अपने एक दोस्त के हवाले से कहा था और एक झूठ जो है वो आपको बहुत दूर ले गया। तो इफ्तिखार भाई जरूरी नहीं है कि जो मैंने बात की है वो आप पर ही फिट हो। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि खैर मैं ये फीमेल ही समझा था, लेकिन जो बात की है मैंने वो हकीकत की है। बाकी आपके दोस्त के हवाले से जो है बड़ी चर्चा हुई थी आपके साथ, अब आपका जो दिल चाहता है वो कीजिए। मैंने तो आपको दरगुजर और माफ करने के लिए कहा था, आगे आप जैसा बेहतर समझते हैं वैसा कीजिए। नदीम भाई आज मेरा एक सब सुनने वालों से एक सवाल है, वो कौन सी चीज है चलती है पर टांगे नहीं है, रोती बे है पर आंखें नहीं, रोती है पर आंखें नहीं है। जी वो है गाना है जो आपने अभी गाया है। अच्छा जी मैं समझ गया जी। अच्छा एक चीज भी पूछना चाह रहे हैं हमारे गुलाम सरवर साहब, और उसके साथ उन्होंने ये भी चीज भी पूछ ली है, और बाद में बता रहे हैं वो गाना है। किसी की समझ में नहीं आया। जिंदगी आ गई है और कह रही है देखा ना था आपकी आवाज की जादूगरी ने सॉन्ग में जान डाल दी। मत करें चने की झाड़ पर मत चढ़ाया करे। संजू कह रही है वाह क्या बात है, बहुत मिठास लिए दिलकश गाया आपने, बहुत शुक्रिया संजू। ये आप लोगों की हुस्ने समात है, वरना यहो जी कोई गल है नहीं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। जी जी नदीम भाई यही गाना, ओके जी। और आसिफ कह रहे हैं सर आजकल तो किसी भी खुशी के मौके पर हमारी यंग जनरेशन सिरक के दरमियान। अच्छा सड़क के दरमियान गाड़ी रोक कर फास्ट ट्रैक पर परफॉर्म शुरू हो जाती है और गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है, क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी अमल अपनी जिंदगी में कर रहे हो ना, आसिफ आपको भी बता रहा हूं और तमाम सुनने वालों को भी बता रहा हूं, गलत नहीं है ये, मेरी नजर में गलत नहीं है। क्या गाड़ी रोक ली है और डेक चल रहा है और फुल परफॉर्म कर रहे हैं, शुगल कर रहे हैं, करना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ये मेरा अपनी राय है। लेकिन हमेशा अपना कोई भी अमल जो आप कर रहे हो ये जरूर सोचिए कि उससे किसी दूसरे को तकलीफ तो नहीं हो रही, दूसरा कोई परेशान तो नहीं हो रहा। अगर आप रोड के बीच में गाड़ी रोक रहे हैं, आपने ट्रैफिक जैम कर दी, ठीक है ना, और ट्रैफिक जैम आपने कर दिए तो पता नहीं किसी को जल्दी है, किसी ने किसी डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है या किसी तकरीब में जाना है, तो तकलीफ तो हुई ना उसको। तो बस हमेशा ये तो आपके इस मैसेज पर मैंने ये एक मिसाल दी है, तो आपका कोई भी अमल हो तो कोशिश ये किया करें उस अमल से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, और अगर तकलीफ नहीं हो रही तो आप इंजॉय करें, जो आपका दिल चाह रहा है वो कीजिए। लेकिन अगर आपके अमल से किसी को तकलीफ हो रही है तो फिर तो यानी कि समझ रहे हैं ना आप। शॉपर खत्म हो गए हैं नदीम भाई। मैंने ईद मुबारक का फर्स्ट मैसेज किया है, वो स्क्रॉल हो गया है, आप देख लें। बिल्कुल चलाएंगे, जब देख लूंगा अमीन, डोंट वरी, वो आपका मैसेज जरूर देखेंगे। तो जनाब अब क्या करें, गाने की जानिब जाना है। अच्छा एक गाना आपको सुनाते हैं, छोटा सा गाना है और उम्मीद करता हूं, बल्कि ये वाला गाना सुनाता हूं अभी आपको, एक नया ट्रैक है ये, ठीक है, ये नया ट्रैक है और बताइएगा आपको कैसा लगा।

0: वेलकम बैक कहेंगे। यार मैंने सोचा था थोड़ा सा तेज गाना होगा, ये तो बहुत ही स्लो गाना है। थोड़ा सा सुना था मैंने पहले, इसका टाइटल मुझे अच्छा लगा, मगर खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लाला कह रहे हैं कोई चाहत की बात करता है तो कोई चाहने की, हम तो दोनों आजमा चुके न चाहत मिली न चाहने वाले। आए हाय हाय हाय क्या बात है। हम कहां वक्फ थे लोगों की फितरतों में से, हम कहां वक्फ थे लोगों की फितरतों से, हमें लगता था जैसे देखता है वैसा ही होता है, जैसा दिखता है वैसा ही होता है। हम कहां वक्फ थे लोगों की फितरतों से, हमें लगता था जैसा दिखता है वैसा ही होता है। खैर जी क्या बात है यार आपकी, और हम आपके कहे बगैर आपकी जानिब से ट्रैक जरूर डेडिकेट करेंगे। और तानिया जी नेक्स्ट ट्रैक हम आपको डेडिकेट करने वाले हैं, हम अपनी जानिब से करने वाले हैं। बहुत जबरदस्ती बात उनको अच्छी लगी हमारी गोश के हवाले से, और उन्होंने भी बड़ी तफसील के साथ मुझे बताया तानिया ने कि कोलेस्ट्रॉल जो है और दिल दोनों का ताल्लुक इससे बहुत ज्यादा है। गोश्त ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो लिहाजा गोश्त उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना खा सकते हैं। और ये तो चिड़िया की तरह खाती हैं, बहुत कम कम लेकिन खाती हैं, है ना जी। एक बड़ी जबरदस्त सी बात इन्होंने बताई और मुझे मजा आया। एक शख्स अल्लाह से दुआ कर रहा था, अल्लाह ताला मुझे चूहा बना दे, अल्लाह मुझे चूहा बना दे, मुझे चूहा बना दे। लोग जमा होना शुरू किए, कहेंगे ये क्या कर रहा है, अब वो दुआ किए जा रहा है। अब लोगों ने पूछा भाई क्यों चूहा क्यों बनना चाह रहा है, इंसान बना हुआ है, इंसान बना रहे, नहीं मैं चूहा बनना चाह रहा हूँ, अल्लाह मुझे चूहा बना। अबे भाई क्यों बनना चाह रहा है, कह रहे मेरी बीवी चूहे से डरती है। वाह वाह वाह वाह। वैसे आपको एक बात बताऊ तानिया जी, बीवी चूहे से डरती है ना, तो वो चूहे की तरह ही होता है, मतलब मर्द जो होता है ना बिल्ली के सामने चूहा बन जाता है, बिल्ली क्या नाम बीवी शेर होती है, यानी कि समझ रही है ना आप, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। नदीम भाई मेरा गाना सुना दीजिए। भाई जरूर सुना दूंगा, बेफिक्र हो जाओ यार। पीएफ मसरूर से हमारे गुलाम सरवर साहब, आपके लिए गाना जरूर चल जाएगा। अब्बास एम अब्बास साहब कह रहे हैं ईम हूं सबको, ईद मुबारक हो सबको। अब्बास भाई क्या लिखा है यार आपने, उन्होंने ई जो इंग्लिश का वर्ड होता है थ्री ईज और थ्री एम लिख दिया, ईम ये लिखा हुआ है उन्होंने, तो मैं समझ गया ईद मुबारक का है। ईद मुबारक सबको अब्बास भाई की जानिब से। मुश्क कह रही हैं मुझे ऐसा लग रहा है प्यार आपसे ज्यादा है या आपकी आवाज से, किसका दिल लेना खूब जान, किसी का दिल लेना खूब जानते हैं जैसे मेरा दिल जान सब ले लिया मगर। अरे मुश्क ब्र इस तरह की बातें नहीं सोचते, यानी कि समझ रही हो ना, ये शो चल रहा है, शो चलने दो, हम इंजॉय करते हैं शो में एक दूसरे के साथ और आपकी बातों को भी इंजॉय करता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। आपके नाम आपका नाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीजें जो है प्यार और मोहब्बत होना चाहिए एहतराम के साथ, दैट्स ऑल। और जी हमारी प्यारी सी बहन नौरीन क्या कह रही हैं, प्यारी और मेरी दिलरुबा संजीदा बहना और काबिले फहम जिंदा दिल भैया जी अयूब लाला को खुसूसी तौर पर ईद का स्पेशल सलाम पेश कीजिए और बेशुमार दुआएं दीजिए। जिंदगी ने एक बात बहुत देर से सिखाई, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, कुछ लोग वक्त गुजारने आते हैं और कुछ वक्त बदलने। मेरी भी रिक्वेस्ट प्ले कर दे नदीम भाई, और आपने जो रिक्वेस्ट की है मेरी प्यारी सी बहना नौरीन ये नहीं चल सकता, उसकी वजह यह है कि गो के पाकिस्तानी सिंगर हैं मगर वजह शोहरत इस गाने की इंडिया है। वाह जी आजकल बड़े सुरीले हो रहे हैं, सदा ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहे, सो स्वीट, थैंक यू वेरी मच कि आपको भी मेरी आवाज पसंद आई। ये कौन सी लैंग्वेज में सॉन्ग है, कौन सा गाना चलाया था मैंने जो आपको समझ में नहीं आया, वो सिंधी वाला एक गाना है, मैंने चलाया होगा सिंधी गाना, मैं बता देता हूँ सिंधी गाना चल रहा है। अब एम अब्बास साहब, मोहम्मद अब्बास साहब कह रहे हैं ओके जी, और अयूब लाला क्या कह रहे हैं, आज आपने मना किया था कि फरमाइश ना करें, इसी वजह से फरमाइश नहीं की, मैं भाई को तंग नहीं करता। यार कितने अच्छे हो गए आप। अरे नहीं लाला, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं यार, मतलब ऐसे फरमाइश आप कर सकते हैं कि कोई पख्तो गाने चला दो, तो पश्तो में अपनी मर्जी से चलाऊंगा ना। लेकिन स्पेसिफिक अगर कोई गाना कहा जाता है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी आजकल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फौरन वो गाना मिलता नहीं है, वक्त होता नहीं है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। वक्त को देखते ही मुझे याद आ गया हमने जाना है एक ब्रेक की जाने।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/fm247365

तो अयूब लाला का हमने मैसेज लास्ट पढ़ा था, तो लाला आपके लिए हम गाना चलाएगा, अपनी तरफ से चलाएगा, डोंट वरी। संजू कह रही है क्या लिखूं, अल्फाज साथ नहीं दे रहे नदीम, क्या किसी की बद्दुआ लगती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि बद्दुआ ना लग जाए, बद्दुआ ना, बद्दुआ नहीं लेनी, बद्दुआ नहीं लेनी। अगर आप हक पर हैं, सच पर हैं, ये आप खुद जानते हैं, ठीक है ना, ये अल्लाह जानता है कि आप जो भी अमल कर रहे हैं तो उसमें आपकी नीयत साफ है, आप हक पर हैं, सच पे हैं, ठीक है ना, तो ये आपको पता होता है या अल्लाह को पता होता है। इसी तरह आप अगर बुराई सोचते हैं, हक पर नहीं है, सच नहीं है, ठीक है ना, तो भी ये बात भी सिर्फ आपको पता है और अल्लाह को पता है, ऐसा है। तो लिहाजा अगर कोई आपको बद्दुआ दे रहा है ना, तो अल्लाह तो जानता है ना, अल्लाह उसकी बद्दुआ को क्यों कबूल फरमाएगा जब उसको पता है कि मेरा ये बंदा हक पर है और सच पर है। बस कोशिश ये किया करें कि किसी का दिल ना दुखे आपकी जात से, और यही अमल जो है माशाल्लाह से हर इंसान ने, माशाल्लाह तो नहीं कहूंगा, नाउजुबिल्ला, हर इंसान ने ये अपनाया हुआ है, दिल दुखाने में माहिर है इंसान। हम कहां वक्फ थे, शायद ये लाइन हो गई वक्फ। संजू आपकी उर्दू और आपकी बातें क्या बात है भाई, क्या बात है। और जनाब आगे बढ़ते हैं, मुश्क कह रही हैं, तो पढ़ा क्यों कमेंट बस। ऐसी बातें मुझे भी जेब नहीं देती। अरे नहीं, अच्छी बात है आपकी, आपकी इस बात से मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूं मुश्क, सॉरी सॉरी, दिल पर नहीं लेना। एक शरारती सी मुश्क थी जो जुमले लिखकर मोहब्बत की चाहत फैला रही थी, दिल से सॉरी। अरे यार मुश्क क्यों शर्मिंदा करते हो, करती हो, शो का एहतराम है, आपका भी एहतराम है, मैं ये हुई ना बात, अब करो, अब ऐसे ही मैसेज करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यकीन माने आपका मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। तो मुश्क आपने बिल्कुल ऐसा नहीं सुना, एक बहुत प्यारा सा इजाफा है अब हमारे शो में, और मैं इस इजाफे को चाहता हूं कि ये कायम दायम रहे। तो लिहाजा मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो ऑन एयर आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद बिल्कुल ये बात करके नहीं था कि मैं आपका दिल दुखाऊं, और मैं ये आपके जो बातें हैं, आपकी जो शरारतें हैं, उसको दिल से बहुत पसंद करता हूं, और हमारे लिसनर भी करते हैं, यानी कि समझ रही है ना, समझे समझे। अच्छा भाई, अब डेडिकेशन बहुत सारी हैं और फरमाइश कोई नहीं करे, अरे तेरी खैर, टाइम का वाकई नहीं पता नहीं चल रहा यार, मैं समझ रहा हूँ एक घंटा वो अभी है, लेकिन अब तो मिनटों वाली कहानी रह गई है। खैर जी, अभी फौरन से पेशतर हम बढ़ रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानेब, और हमारे गुलाम सरवर साहब बहुत देर से उन्होंने फरमाइश की हुई थी, गाना मेरी क्यू शीट में मौजूद था, इसीलिए मैं कह रहा था यही है ना, तो वो गाना आपके लिए और तमाम सुनने वालों के लिए, एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक। ते गोरे अनुपरा करो, काला श्या काला, मेरा काला है दिलदार। शोभी भाई हमारे साथ मौजूद, यानी कि आप लोगों को खुशखबरी दे रहा हूँ कि शोभी भाई आ चुके हैं। कुछ ही देर में आप उनकी सहर अंगेज आवाज सुनेंगे और महसूस होंगे भरपूर तरीके से। शोभी भाई आज क्या खाया आपने? मटन, मटन, बीफ, मटन खाया। ओए ओए ओए मटन, इसी बात पर ब्रेक बनती है।
1: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
2: FM247365

वेलकम बैक सोनियो। तो भाई ये हमारे शोभी भाई के मटन से ब्रेक आ गई बीच में तो ब्रेक लगा लगा कर जो है कुछ ना कुछ खाना चाहिए, चाहे वो मटन हो। शोभी भाई आपने भी और अभी तक जितने भी लिसनर्स हैं वो बता रहे। मैंने शोभी भाई एक मैं सवाल फ्लोट किया था और सवाल ये फ्लोट किया था कि एक इंसान जो है दिन में कितना गोश्त खा सकता है। तो कोई बता रहा था पांच किलो, एक बंदे ने पांच किलो भी बताया। मैंने बोला भाई क्या हो गया तुझे, पांच किलो? मैंने नहीं बताया, उसने अपना बताया होगा। और खैर बहुत से लोगों ने बताया आधा पाओ, एक पाओ, और इससे ज्यादा आगे कोई बढ़ा नहीं। लेकिन आप यकीन माने बकरीद को कोई भी आधा पाव गोश्त नहीं खाता होगा, उससे ज्यादा ही खाता होगा। आधे पाव की तरफ तो देखता भी नहीं होगा, पाव की तरफ नहीं देखता। शोभी भाई सही कह रहे हैं। और वैसे कितना गोश्त खाना चाहिए वैसे आपने शोभी भाई आके बताना है कि गोश्त कितने किलो खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए। ये शोभी भाई इस बात को कंटिन्यू करेंगे, आप यकीन मानिए, और ऐसे ऐसे मशवरे देंगे आपको, बताएंगे कि भाई मैं अभी खुद तीन पाव गोश्त खा के आया हूँ। कंटिन्यू होगा भाई। और इस हवाले से मैं आपको एक बात 100% बता रहा हूं कि शायद मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन ना दे सकूं गोश्त खाने के हवाले से जो आपको शोभी भाई देंगे, और क्योंकि ये तड़का बड़ा अच्छा लगा थे तो मैसेजेस आपके आ रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं, मगर क्या करें भाई, आप लोगों ने फरमाइशें इतनी की हुई है, डेडिकेशन इतनी ज्यादा है कि क्या करें। तो लिहाजा एक और बड़ी जबरदस्त किस्म की डेडिकेशन की जानिब जाएंगे, और ये डेडिकेशन हमारा बहुत ही प्यारा राज दुलारा आंखों का तारा लाडला अयूब आफरीदी साहब जो है वो उनकी डेडिकेशन है। और वो मतलब इतने प्यारे हैं कि वो कहने लगे नदीम भाई आपने फरमाइश का मना किया था तो मैंने फरमाइश ही नहीं की। मैंने बोला नहीं यार आपकी डेडिकेशन तो होगी। तो अयूब लाला की जानिब से जनाब ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं माहीन को, निगत को, जीबीएन को, और पता नहीं कौन बानो है उसको। एलो फड़ो

वेलकम बैक तीन तीन दो दो चार चार मुझको हो गया ठल नाजिया हसन की आवाज और उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर, बेतहाशा मैसेजेस आपके मेरे सामने मौजूद हैं। हमारे यूसुफ भाई पापोश से आ गए हैं। एफ एम 100 की तमाम फैमिली को, आंटी को, चाची को, रूसा को, गुलबानों को, तमाम डॉक्टर्स को, इमरान भाई को, खिताब लाला को, गुफरान भाई को और मेरे वाले साहब को उन्होंने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। और उसके अलावा शुक्रिया के मैसेज आ रहे हैं। तानिया जी ने भी थैंक्स कहा है, मुश्क कह रही हैं, गुड सॉन्ग फोन प्यार हाय नादिया। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा, ये शो की बड़ी तारीफें कर रही है, मुश्क इतनी तारीफें मत किया करो, मुझे क्षमा आ जाती है। संजू कह रही है हम कहां वक्फ थे। अच्छा, वही वाला है। और फरीदा बुरानुद्दीन भी आ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की। मैसेजेस सारे जो है वो तफसील के साथ मैं नहीं पढ़ सकूंगा, बहुत माजरत चाहूंगा क्योंकि वक्त बड़ा महदूद सा रह गया है और अभी हमने जाना है एक ब्रेक की जानेब, तो चलते हैं ब्रेक की जानेब। वेलकम बैक। सुनियो, तानिया जी को डेडिकेट हो गया जनाब, जिंदगी को भी ट्रैक डेडिकेट हो गया और अयूब भाई ने जो कहा था वो भी डेडिकेट हो गया और भी बहुत सारे डेडिकेशंस हुई हैं, लेकिन अभी मुझे याद नहीं पड़ रहा कि एक ट्रैक, थोड़ा सा मूड जो है आपका आगे पीछे मैं कर रहा हूँ, थोड़े से स्लो ट्रैक चल रहे हैं, थोड़े से फास्ट ट्रैक चल रहे हैं, मगर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है जनाब, ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे जरीन की जानिब से और नौरीन की जानिब से। जो नेक्स्ट ट्रैक मैं चलाऊंगा वो चलाऊंगा किन के लिए, प्यारी सी संजू के लिए है जी। अच्छा, अब मैं ट्रैक ढूंढ रहा हूं, अब मैं सोच रहा हूं क्योंकि जो ट्रैक मुझे कहा अपना नौरीन है, नौरीन वो वाला ट्रैक तो मैं खैर नहीं चला सकूंगा, उसके लिए मैं माजरा चाहूंगा। और मगर एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आतिफ असलम की आवाज, उन्होंने कहा था तो आतिफ असलम की आवाज को ही हम शामिल करेंगे। और आतिफ के भी क्योंकि एक से एक ट्रैक है तो इस वजह से मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि कौन सा ट्रैक चला दूं। अभी तक मेरे सामने जो आ रहे हैं वो सारे उनके ट्रैक्स आ रहे हैं जो कि थोड़े से स्लो टेम्पो के मेलो से ट्रैक हैं। फास्ट वाला ट्रैक असल में मैं चाह रहा था चलाना, लेकिन अब क्या करें जनाब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है आतिफ का जो कि हम डेडिकेट कर रहे हैं संजू को नौरीन की जानिब से और जरीन नूर की जानिब से।

वेलकम बैक सुनियो। पर दिल करे तो क्या करे, उम्मीद करता हूँ कि संजू को पसंद आया होगा और उन्होंने नौरीन बहना का और उसके साथ साथ जरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है, शुक्रन शुक्रन कहा है। और जनाब कौसाए और फरीदा बुरहानुद्दीन कह रही हैं आप हमसे नाराज हैं या जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं हमारे मैसेज। अब आखिर में अगर आपके मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं उसका क्या करूं, कभी पहले किया इग्नोर है भाई। और संजू आप जो जो बातें लिख रही हैं सब बिल्कुल दुरुस्त है, शुक्रिया शुक्रिया जनाब नदीम साहब। अरे जीती रहे मेरी प्यारी सी बहन नौरीन। और जनाब अब जो है वो आपसे इजाजत भी चाहनी है और इजाजत चाहने से पहले कुछ बात कर लें गोश के हवाले से। गो के इस बात को इंशाल्लाह ताला हमारे प्यारे से शोभी भाई कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि आपको गोश किस मकदार में खाना चाहिए। और हमारे शोभी भाई को ढेरों ईद मुबारक की खुशियां नसीब हो, ये कहा है तानिया हसन जी ने। शोभी भाई ने हाथ हिला दिया है और अभी कुछ ही देर में आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो जनाब वैसे आपको एक बात बता दूं कि एक सेहतमंद इंसान के लिए नॉर्मल रूटीन में आधा पाव या मैक्सिमम एक पाव गोश्त जो है वो एक दिन में खाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो अब जाहिर है थोड़ा सा क्योंकि ईद का सिलसिला कार चल रहा है तो कभी कभार थोड़ा बहुत ज्यादा अगर खा लिया है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ फिर एक वॉक भी होनी चाहिए कि वो जो कुछ खाया है आपने वो हजम हो जाए। लेकिन यहां पर हजम किए बगैर गोश्त ऐसा हावड़ा पड़ जाता है, इतना गोश्त लोग खा लेते हैं, यकीन मानिए वाकई में किलो किलो दो दो किलो लोग बड़ी आसानी के साथ खा लेते हैं। गो के और गोश्त मौजूद है भाई घर से, फ्रिज से कहीं दूर थोड़ी भागेगा यार, थोड़ा थोड़ा करके खा लो वजी बाबा। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सलीम मेमन भाई आपने जो गाना कहा था यकीन माने कि वो मैसेज ऐसा गायब हुआ कि मुझे मिला नहीं, पता नहीं कौन सा गाना कहा था, वो मैं चला भी सकता था। और सलीम मेमन भाई के बहुत सारे मैसेजेस आए, अमीन भाई आपका मैसेज आया, बादशाह बलूच साहब का मैसेज आया और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके मैसेजेस आज मैं रीड नहीं कर सका उनसे मैं दिली तौर पर माजरा चाहूंगा, यकीन मानिए जानबूझकर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। ये आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है कि आप जिस तरीके से इतने सारे मैसेजेस मेरे सामने भेजते रहते हैं, लेकिन मैं अकेला इंसान जितना सिमेट सकता हूं कोशिश यही होती है उसको सिमेट लूं। यूसुफ भाई पापोच से जो है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जाहिर है अभी फ्री हुए होंगे तो इनका मैसेज आया है, और उनकी पूरी फैमिली को भी हमारी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जनाब इसके साथ ही चाहूंगा मैं आप लोगों से इजाजत, इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल स्लीपलेस नाइट में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते बहुत ही खूबसूरत से दो ट्रैक जो है वो आप सबकी समातों की नजर कर रहा हूं अपनी जानिब से। अल्लाह हाफिज़।

वक्त एक बजकर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और एक बार फिर आपको खुश आमदीद। और जनाब ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ।

90s की एक और याद ताजा करते हैं सलीम दानिश की, और फिल्म का नाम है डैडी रिश्ता कर आया।